0: पानी के नीचे ही है। हम लोग तो अभी भी रास्ते पर टन के नीचे है।
1: आपका घर बह गया, अभी आप और आपका परिवार कहाँ रह रहे हैं? अभी भी आप एक टेंट में
0: अभी
1: रह रहे
0: अभी
1: हैं?
0: भी हाँ सर, अभी भी ट्रेन पे ही है।
1: और आपका घर कहाँ है? क्या हुआ आपका घर का?
0: घर का अभी तो पूरा बुरा हालत है। अभी वो घर के अंदर पानी घुसा हुआ है।
1: तो आपको कैसे लगा जानमुनि जी, जब आप घर पहुंचे थे और आपका घर पूरा पानी के अंदर था, आपके माता पिता एक टेंट में रह रहे थे, आपको कैसे लगा? आप गोल्ड मेडल लेके आसाम वापस आ रहे थे, आपको कैसे लगा ये सब देख के?
0: बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जिस बार भी गया था खेलने के लिए तब मैं गोल्ड मेडल लेके तो अपने घर में ही जाता था, पर अब इस बार तो बाढ़ की वजह से हम रास्ते पे ही था, इसलिए थोड़ा सा मतलब दुख की बात है ना ये सर।
1: जब आपने अपना घर और सब कुछ ऐसे पानी के अंदर देखा बाढ़ में, जानमुनि, क्या लगा कि कराटे का सपना भी खत्म हो गया? आपको ऐसे कभी भी लगा जब आप दिल्ली जा रहे थे?
0: हाँ सर, लगा था तो बाढ़ की वजह से पूरा मेरा जो सपना था ना वो टूट गया था।
1: तो आपका परिवार ने आपको क्या
0: हाँ
1: बताया? आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया आपको?
0: सर, बहुत सपोर्ट किया, और आलोक पांडे सर ने भी बहुत सपोर्ट किया।
1: और आपके परिवार ने, जानमुनि जी, हमने पढ़ा कि आपके परिवार ने आपके लिए वो जो दो भैंस थे वो बेच दी, वो एक छोटा सा फिशरी आपका है आपके घर में, उसको भी रखा ताकि ताकि आपका जो कराटे का सपना था वो पूरा हो जाए, क्या ये सच है? आपके लिए ये सब किया? कैसे
0: हाँ सर, हाँ सर, ये सच है।
1: हुआ ये सब? थोड़ा डिटेल में बताइए कैसे आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया ऐसे।
0: सर, मुझे मेरे परिवार ने कि मुझे बताया कि तू खेल सकती है, तू आगे बढ़ सकती है, और मुझे ये बताया कि बांध की वजह से अपना सपना रुक रुक नहीं जाना चाहिए। और तभी अलक पांडे सर आया और मुझे बोला कि तू खेल पाएगी, तू दिल्ली जा, मैं टिकट वगैरह और रूम की सारी जो तुम्हें चाहिए वो मैं दिला दूंगी। अच्छा बोला था।
1: जब आप असम वापस आए घर पे, जानमुनी, अपने माता पिता से मिले तो उनका क्या रिएक्शन था? वो खुश थे? घर तो पानी के अंदर है लेकिन वो आपको गोल्ड मेडल लेकर आए हुए देख के खुश थे? उन्होंने क्या बोला
0: हाँ
1: आपको?
0: सर, हाँ सर, बहुत खुश थी। उन लोगों की आंखों से आंसू निकल गए थे खुशी
1: क्या बोले हो आपको?
0: से। मतलब ये बोला कि इतनी तकलीफ से जाकर तो दिल्ली से नेशनल तक गोल्ड मेडल लेके आए, वही हमारे लिए सुख की बात है, ऐसा बोला था।
1: ये फ्लड्स के बाद भी आप ट्रेनिंग करती रही जानमोनी जी, इतनी हिम्मत कहाँ से आए आपको? ये जो हो रहा है अभी असम में, ये नेशनल मीडिया में कहीं दिख दिख नहीं रहा। एनडीटीवी पर हम लगातार कवर कर रहे हैं कि असम में बाढ़ कैसे हो रहा है, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आपने ट्रेन किया, बाढ़ के अंदर में भी ट्रेन किया आपने?
0: हाँ सर, क्योंकि मुझे मेरा परिवार पूरा सपोर्ट करता है ना, इसलिए मुझे साहस मिला कि तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
1: और जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे क्या आपको कभी भी लगा कि आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा?
0: हाँ सर, ऐसा तो लगा था बांध की वजह से।
1: जब गोल्ड मेडल जीते आपने जानमोनी जी, सबसे पहले परिवार में किसको याद किया आपने, किसको फोन किया आपने?
0: मैं अपने भाई को सबसे पहले कॉल किया था।
1: और उन्होंने क्या बोला आपको?
0: उसने मुझे बताया कि सच सच में क्या, मैंने बोला हाँ भाई सच, मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया, ऐसा बोला था। वो तो खुशी से पागल हो जा रहे थे।
1: तो अब सिचुएशन क्या है आपके गांव में जानमुनी? आपका घर अभी भी पानी के अंदर है, अभी भी आप और आपके परिवार एक टेंट में रह रहे हैं?
0: हाँ सर, अभी भी घर पानी के अंदर ही है। हम अभी भी हमारा परिवार और गांव के लोग अभी टेन के नीचे ही रह रहे हैं।
1: तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक आप घर वापस जा पाएंगी?
0: 2 महीने के बाद सर।
1: तो 2 महीने के लिए आप एक टेंट में रहेंगी जानमुनी?
0: हाँ सर।
1: और आपका आपका ट्रेनिंग लगातार चलेगा इसमें भी?
0: हाँ सर चलेगा, चलेगा रास्ते पे ही।
1: आप रास्ते में ट्रेन करेंगी?
0: हाँ सर।
1: आखिरी सवाल जानमुनी,
0: हाँ
1: आपका
0: सर,
1: अगला सपना क्या है? आपने एक नेशनल मेडल जीता है अभी, इंडिया के लिए मेडल है क्या आपका नेक्स्ट गोल? आपका सपना क्या है, फ्यूचर ड्रीम क्या है आपके लिए?
0: सर मुझे अगली बार इंटरनेशनल में जाकर गोल्ड मेडल लेना है, असम के लिए रिप्रेजेंट करना है सर, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है।
1: हम आपको बहुत बधाई देते हैं आपके टैलेंट के लिए जानमुनी जी, आपकी बहादुरी के लिए, और हम आपको आपकी कहानी पूरा इंडिया तक जाएगा अभी हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस जानमुनी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू,
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
2: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
3: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
5: तम्बी कैसे? टाइगर कैसे?

0: लेकिन आप बैठिए तो, आप सुनिए तो, ये जवाब उन्होंने सुनना चाहिए। और झारखंड में जो हो रहा है उसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए। मतलब एक जगह एक रूल और दूसरी जगह अलग कुछ, ये डबल स्टैंडर्ड रहा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आत्मपरीक्षण करना चाहिए और बहुत अपेक्षाएं रखकर सभी क्षेत्र के एमपीज आते हैं, अपने अपने प्रश्न रखने के लिए आते हैं। और बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यसभा में ट्रिब्यूनल का बिल हुआ लेकिन एक भी इंडिया गाड़ी का कोई उपस्थित नहीं था वहां और चर्चा में भाग भी नहीं लिया।
1: केवल ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है और चंदा चोरी, इससे देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान और धर्म से जुड़े व्यक्तियों की भावना आहत हुई। चंदा चोरी करने वाले लोग, चढ़ावा चोरी करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के छात्रों के ऊपर, वो छात्र एक महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं, निहत्थे हैं और अपनी जायज मांग को लेकर के बैठे हैं। उन पर गोलियां कैसे चली, गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं, किसके निर्देश और आदेश से गोलियां चली, केवल यही दो मुद्दे हैं जिस पर सदन लगातार सदन में बात रखने से सरकार कतरा रही है।
2: लेट मी नाउ टेक यू टू झारखंड। अ डे आफ्टर द लाठी चार्ज द स्टूडेंट्स इन रांची वर बैक ऑन द स्ट्रीट्स, दिस टाइम चूजिंग साइलेंस एज द वेपन। दे स्टेज्ड अ साइलेंट मार्च विद मोबाइल फ्लैश लाइट्स इन हैंड, a symbolic protest against the police action on the 10th of August. Amid the political showdown, the Jharkhand Assembly was adjourned sine die a day ahead of schedule. The BJP corner Chief Minister Hemant Soren accusing his government of running away from questions. Soren meanwhile defended the steps taken by the government thus far, assuring the students that their issues are now being resolved. But the political blame game has now widened. The former Education Minister Dharmendra Pradhan training his guns on Rahul Gandhi, accusing him of double standards over the Jharkhand crackdown. Well, the Kaveri water dispute is heating up once again. The Kaveri Water Regulation Committee has directed Karnataka to release as many as 12,000 cassettes of water a day to Tamil Nadu for 15 days straight. And barely hours later, the Kaveri Water Management Authority backed the order. The release is set to begin from 8 a.m. tomorrow, with Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar saying that his government will protect the farmers' interests while staying within the law. And he's already looking at the legal options, with officials hinting that the state may even move to the Supreme Court. Meanwhile, this isn't the state's first order this season. Back in July, Karnataka was told to release 3,500 cassettes. Meanwhile, D.K. Shivkumar is set to meet ministers and even legal experts today as developments pick pace ahead of the Supreme Court hearing on the dispute, which is meant to take place on the 13th of August.
3: The direction given by the Kaveri Water Management Authority is to reiterate the decision taken in the Regulation Committee. The Regulation Committee has decided to release 12,000 cusecs for a period of 15 days. To be realized at Beligundalu. So that decision is being examined by our legal experts and technical experts, and we will take suitable decision as necessary in accordance with the directions of the government and our as per the advice of our legal and technical experts.
2: Let's track some more updates coming in for you at this hour. Well, just days after Udhanidhi Stalin was picked up for questioning by the Tamil Nadu police over his alleged derogatory remarks against actor Trisha, now AIADMK leader R.B. Udhaykumar has stirred a fresh row, saying that Tamil Nadu is waiting for actor Trisha to be made the deputy chief minister in an apparent dig at the chief minister Vijay. Now, a complaint has also been filed.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: Well, Reed, just ahead of the Independence Day, it's a beautiful picture that is coming out from the heart of the capital, because today, early morning, around 8 a.m., we are expecting that Tiranga rally, Yatra rally, the bike rally will start, in fact, from Bharat Mandapam, where we are standing, and it will be ending towards India Gate. And you'll see the very beautiful picture that we are trying to show you. You'll see the BSF Jawans here who have lined up, who are on their bikes with tricolour, mounted on their bikes, ready to participate in this Tiranga Yatra. In fact, I'll try to go across and speak to them. Sir, अक्सर हम आपको देखते हैं बॉर्डर्स पर सेफ गार्ड करते हुए, आज आप यहाँ पर तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैडम, तिरंगा रैली में शामिल हो गए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सरकार, भारत सरकार द्वारा चला गया बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक पूरा, जैसे ही तिरंगा अपने हाथ में आता है, पूरा जोश से देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। वैसे तो मैम, जैसे ये शरीर पे वर्दी पहनते हैं तो अपने आप में गर्व फील होता है, लेकिन तिरंगा हाथ में आने से और देशभक्ति की भावना जागृत होती है सर।
0: और देशभक्ति की भावना जागृत होती है। सो एज यू हर्ड हियर ऑल ऑफ दीस बीएसएफ यू नो जवान्स दैट आर राइट हियर, सो व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री हु इज इन फैक्ट वाचिंग ऑल ऑफ दिस एंड हु विल बी वाचिंग द तिरंगा रैली?
2: देखिए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है भी हम इस तिरंगा रैली में शामिल हो पाए हैं। सारे CAPF के जितने भी फोर्सेस हैं, CRPF, BSF, ITBP, SSB, NSG, सभी अपने कार्यक्षेत्र से निकल के भारी मात्रा में यहाँ पे तिरंगा रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए उत्साहित होके आए हैं। तो हमारा यूथ से यही मैसेज है भी, जो ये इंडिपेंडेंस डे है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए गए हैं, तो इसको पूरे उत्साह से और अपना पूरा जी जान लगा के इसको, इस अवसर को मनाया जाए, ताकि सभी को पता लगे भी ये जो हमने दिन जो हमारे लिए आया है, ये इसमें क्या क्या सेक्रीफाइसेस हुए हैं और इसको हमने कितना बलिदान दिया है लोगों ने। तो इसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने सभी भारी मात्रा में यहाँ पे लोग शामिल हुए हैं जी।
0: So as you heard here, you know, the Jawans clearly saying that in fact, you know, a lot of sacrifices goes in fact to safeguarding the nation, and all of them are participating here today. Remember that it was Prime Minister's call for Har Ghar Tiranga, and in fact it was he who had urged more and more people to come out and in fact participate in this Har Ghar Tiranga Yatra that will be starting from 8 a.m. is what we are expecting, and it will be you know, the NDA MPs who will be joining this Tiranga rally. Over to you.
3: Absolutely, Ishika, early in the morning, but patriotism now seems to be on a high. Let's also cut across to our colleague Tejshree, who's joining us on the broadcast. Tejshree, you know, Ishika has joined us with the security forces, and not just the forces, we're also seeing the legislators also now get on ground zero and get started with the Tiranga rally. What is the latest update that you have for us at this hour?
4: Well, absolutely a big day for the nation today, since the national capital is actually going to witness the bike rally today under the umbrella of Har Ghar Tiranga. And yes, there are a lot of people who are participating, especially the security forces as far as the BSF is concerned. The NSG commandos are also there. A lot of focus is also on the youngsters of the country. We'll also be speaking to them, but first let us speak to the BSF jawans who have been participating in the rally. So as to what is the sentiments amongst them, sir, क्या सेंटिमेंट है आज आपका? आज आप इस बाइक रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना बड़ा संदेश जाता है आज?
5: आज के दिन 15 अगस्त जो हम मनाने जा रहे हैं, और आज तिरंगा रैली है, यह भारत के इतिहास के पन्नों में खास जगह रखता है। आज के दिन भारत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, 200 साल ब्रिटिश शासन ने राज करके उसको खदेड़ा था और भारत को आज़ादी मिली थी, और इस तिरंगा रैली में हमें बहुत खुशी हुई है शामिल होने से, और ऐसा ये जज्बा आगे बढ़ता रहेगा,
0: ये जज्बा इसी तरह से आगे बना रहेगा। लेट अस स्पीक टू अ फ्यू मोर जवान, सर किस तरह से आज का जोश है यहाँ पर? फिलहाल अब कुछ ही मिनटों में तिरंगा रैली शुरू होने वाली है, वाइस प्रेसिडेंट इस रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे, तमाम जो BSF के जवान हैं इस रैली, तिरंगा बाइक रैली को लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे?
6: सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम यहां पर इस रैली को भारत मंडपम से लेकर के

0: वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद ये इसको विराम कर देंगे। ये हमारे सभी तिरंगा यात्रा है, इसमें हम सब मिलकर एक साथ सभी फोर्सेज भाग ले रहे हैं और सिविल पॉपुलेशन भी हमारे साथ है।
1: Alright, so all the forces together are going to participate in this Tiranga bike rally as well. We'll also speak to a few more jawans. सरहद पे आप देश की रक्षा करते हैं, आज यहाँ पर हैं, तिरंगा को हाथ में लिए आज आप बाइक रैली में शामिल होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आज आप?
2: सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जय हिंद। ये एक ऐसा दिन है कि हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसमें प्राउड होता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। थैंक यू मैम।
1: So, all right, we'll also speak to, you know, some of the youngsters as well, who are actually, you know, directing this entire Tiranga bike rally, and we'll be speaking to them so as to what is the sentiments among them as well. You actually, I was watching that you were also, you know, in a way guiding, so as to what will be the route, how will the rally be taken, flagging off. So, what is the sentiments amongst the youngsters as far as this Tiranga bike rally is concerned?
3: Sir, ma'am, sentiment speechless because this ride goes to nation. So, we proud to be an Indian. So, sentiment is outstanding.
1: संदेश कितना बड़ा जाता है तमाम युवाओं को आज जब इस तरह की रैलियों का आयोजन किया जाता है?
3: मैम, पढ़ना तो चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो फ्लैग की रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है कि उसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रहा है और लोगों को मालूम चल रहा है कि यार वी आर इंडियन।
1: कितने लोग पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है और साथ ही साथ इसका रूट क्या होने वाला है?
3: मैम, ये 400 प्लस रहेगा और इसका रूट जो है ये मेजर ध्यान चंद में एंड हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली हम इंडिया गेट तो नहीं करेंगे क्योंकि रश का टाइम है और 15 अगस्त आ रहा है तो सिक्योरिटी पर्पज के चक्कर में। टोटल राइड 7 किलोमीटर्स की है मैम। ये
1: 7 किलोमीटर्स की टोटल राइड है और 8 बजे के आसपास ये तिरंगा बाइक रैली।
3: हाँ जी बिल्कुल।
1: सो हाउ इज द जोश?
3: जोश हाई वाइड।
1: ऑल राइट, सो दीज आर द यंगस्टर्स इन फैक्ट, यू नो, हु आर एक्चुअली हाइलाइटिंग सो एज टू हाउ द सेंटीमेंट इज अमंग द यंगस्टर्स ऑन द ग्राउंड। यू कैन सी दैट द बीजेपी कार्यकर्ताज हैव आल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन एंड इन जस्ट सम टाइम फ्रॉम नाउ, यू नो, व्हाट वी आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग इज द वाइस प्रेसिडेंट विल आल्सो बी कमिंग ओवर हियर एंड देन ही विल बी फ्लैगिंग ऑफ दिस एंटायर रैली एंड देन द रैली विल बी बिगनिंग ओवर हियर फ्रॉम द वेरी लोकेशन वी आर रिपोर्टिंग राइट नाउ। दीज आर द पिक्चर्स दैट वी आर गिविंग यू ऑफ द स्टेज।
4: ऑलराइट,
1: सो द स्टेज इज ऑल सेट, द पीपल आर रेडी, द फोर्सेस आर ऑल रेडी, द यंगस्टर्स आर रेडी एंड वी आर ऑल्सो रेडी टू ब्रिंग यू ऑल द अपडेट्स फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो।
4: Right, absolutely, Rishika. Rishika, we'll keep coming back to you as and when more developments come in. But thank you so much for joining us and sharing those crucial updates with us. Let me now take you to Jharkhand. A day after the lathi charge, the students in Ranchi were back on the streets, this time choosing silence as their weapon. They staged a silent march with mobile flashlights in hand, a symbolic protest against the police action on August 10th. Amid the political showdown, the Jharkhand Assembly was adjourned sine die a day ahead of schedule. The BJP member cornered Chief Minister Hemant Soren, accusing his government of running away from questions. Soren, meanwhile, defended the steps taken by his government, thus far assuring the students that their issues are now being resolved. But the political blame game has only widened, with former Education Minister Dharmendra Pradhan training his guns on Rahul Gandhi, accusing him of double standards in the Jharkhand crackdown.
5: झारखंड विधानसभा के फ्लोर पे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के इतने दिनों के आंदोलन के बाद, यानी कि 17 दिनों के आंदोलन के बाद, आज दो बड़े आश्वासन दिए हैं। पहला आश्वासन उनका यह है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो है, जिसकी वो मांग कर रहे हैं रद्द करने की, वो कह रहे हैं कि वो रद्द करने को तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि TDPL कंपनी जो है, उसने अभी तक जितने भी परीक्षाएँ आयोजित की हैं उस पर वो जाँच कराने को तैयार हैं। लेकिन इनकी जो एक मांग है, CBI इंक्वायरी की मांग है, उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए, यानी कि उस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है।
6: जी, उन्होंने अभी CBI पर कुछ नहीं बोली है और हम लोगों का मुख्य मान पहले से तय था कि रिफॉर्म लाना है, CBI जांच करना है और जितने भी TDPL द्वारा कंपनी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया उसको रद्द करना है, जो मेन मुद्दा CBI जांच। लेकिन उन्होंने इसी पे कोई टिप्पणी नहीं किया है। तो सर, CID पे हम लोगों को तो भरोसा है नहीं, क्योंकि 2 साल से हम लोग CID के भरोसे बैठे हुए हैं और अभी तक उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकते।
5: अगर जब तक CBI जाँच नहीं होती है तब तक आपका क्या मानना है कि आंदोलन ऐसे ही?
7: देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहेंगे। कारण क्या है कि छात्रों के आंदोलन के दबाव के कारण ही जो हमारे मुख्य मुद्दे थे उनमें से कुछ मुद्दों पे तो सहमति बनी, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन, आप पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप पहले ये बताइए कि राज्य के जो छात्र हैं वो CID जैसी एजेंसियों पे भरोसा क्यों करें? आखिर ऐसा आपने क्या स्थापित किया है हमारे राज्य में कि छात्र CID के ऊपर भरोसा कर ले? अगर हम पूर्व की परीक्षाओं को देखते हैं, उन परीक्षाओं में भी CID SIT की जांच हुई और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन उसका क्या प्रतिफलन मिला छात्रों को? इसके पूर्व JSSC CGL की परीक्षा में भी गठित हुआ एजेंसी का, उसका क्या परिणाम मिला? इसके पूर्व भी कई कमेटियाँ गठित हुई।
5: CBI जाँच की बात आज मुख्यमंत्री नहीं किया, उन्होंने बाकी जो बातें कही हैं विधानसभा के, उन्होंने 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने की बात की, उसके अलावा जांच कराने की बात की, यानी कि वो हर परीक्षा जो TDPL ने जिस आयोजित किया है उसे जांच कराने की बात की, लेकिन CBI जांच जो कि छात्रों का एक मुख्य मुद्दा है उस पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। छात्रों का कहना है, ये कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, इनका कहना है कि जब तक वो मांग भी हमारी नहीं मानी जाती है तब तक अनवरत जो है रांची में छात्रों का आंदोलन चलता रहेगा।
8: मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर, बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं और कल जिस तरीके से सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच में पूरा दिन भर का समय व्यतीत हुआ,
9: आप लोग सदन में व्यवस्था कायम होने नहीं दीजिएगा, सदन की व्यवस्था को कायम करने नहीं दीजिएगा एकदम,
8: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे।
10: एक तो उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से बात की, साथ ही साथ ये भी कहा कि हम कोई भी किसी लाठी, अगर लाठी चार्ज उसका भी हम विरोध कर दें, किसी की भी सरकार हो, लगातार वो है, लेकिन ये लोग किसी से बात किए क्या? नीट इतना बड़ा कांड हुआ तो वहां माफी तो छोड़ दिया, जयकार के नारे लगा रहे हैं, उस समय कोई भारत बंद या दिल्ली बंद की उन्होंने बातें नहीं की, रहा झारखंड बंद चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अवसर इसमें ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया है। तो मैं छात्रों से ही कहना चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए, आपकी मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं और आपके समस्याओं का निदान हम करना चाहते हैं, क्योंकि उस दर्द को मैंने देखा है, उस दर्द को मैंने झेला है और उस उनके दर्द को मैं सबसे पहले सदन में विधानसभा में मैंने उठाया है।
11: तो ये लगा कि उन्होंने पूरी तय करके रखे हुए थे कि आज हमको विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देना है, और इसलिए जनता के और बच्चों का ये सवाल से सरकार भाग रही है, उस पर वो कार्रवाई नहीं करना चाहती। भाई कार्रवाई क्या करेंगे, CID क्या जांच करेंगे? CID वाले ने तो सब गुड़ गोबड़ कर रखा है, यानी जान बूझ करके आप मामले को दबाए हुए हो, क्योंकि लगता है कि आप बड़े लोगों को बचाने के प्रयास में। ख्यांते का तो रिजिग्नेशन हो गया, लेकिन JCC में जो प्रभारी चेयरमैन कौन है, उन्हीं का IAS ऑफिसर सचिव है किसी विभाग में, प्रशांत कुमार, उनके कालखंड में ये सारे गड़बड़ियां हुई, वो कब रिजाइन देंगे, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, ये हेमंत सोरेन को बताना चाहिए।
4: Let's walk you through more updates coming in at this hour. The Kaveri water dispute is heating up again. The Kaveri Water Regulation Committee has directed Karnataka to release 12,000 cassettes of water a day to Tamil Nadu for 15 days straight. And barely hours later, the Kaveri Water Management Authority backed that order. The release is set to begin at 8 a.m. tomorrow, with Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar saying, saying that his government will protect farmers' interests while staying within the law. And he said that he's already looking at legal options with officials, hinting at the state may move the Supreme Court. Meanwhile, this isn't the state's first order this season. Back in July, Karnataka was told to release just about 3,500 cassettes. Meanwhile, D.K. Shivkumar is set to meet ministers and even legal experts today as developments pick pace ahead of the Supreme Court hearing on the dispute on 13th of August.
12: ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಿನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಬರೀ ಕಾವೇರಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ತುಂಗಭದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡ್ಯಾಮ್ ನೀರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
13: The direction given by the Kaveri Water Management Authority is to reiterate the decision taken in the Regulation Committee. The Regulation Committee has decided to release 12,000 Q6 for a period of 15 days to be realized at Beligundalu. So that decision is being examined by our legal experts and technical experts, and we will take suitable decision as necessary in accordance with the directions of the government and our as per the advice of our legal and technical experts
14: by CWRC. So just now 1 hour back so heard, so I met CM and water resources minister, then only come back. Already 3,500 is not possible. The time government taken decision. So all party meeting also conducted so early. So after that the raining is very much, and 27,000 Q6 through Kabni they pass Tamil Nadu.
4: While shifting focus to more updates coming in at this hour, just days after Udhanidhi Stalin was picked up for questioning by the Tamil Nadu police over his alleged derogatory remarks against actor Trisha, now the AIADMK leader R.P. Udaykumar has stirred a fresh row, saying that Tamil Nadu is waiting for actor Trisha to be made the deputy chief minister. This in an apparent dig at the chief minister Vijay. A complaint has now been filed by TVK functionaries against the AIADMK leader in Tuticorin. However, no FIR has been registered so far in the case. Now, this comes just after the AIADMK leader made the remarks in context of criticizing the TVK over recent appointments of cinema industry-linked professionals to government roles. And amid all of this, Trisha has posted some cryptic posts herself, calling the drama embarrassing at this age, even talking about karma and telling followers to go and find peace. This, remember, has set off speculation online, the question being, is this a wielded swipe or just a matter of coincidence? Well, there's some breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Well, Zepto has responded to food safety inspection. That's right, after the crackdown on Zepto's, in fact, dark stores. We're learning an important update coming in, where Zepto has responded with a statement saying the routine food safety checks were conducted and that they fully cooperated with the authorities. This comes amid the crackdown from officials on Zepto. Now, we're learning an important update coming in. The latest, Zepto has now gone on to issue a statement saying that it's taking steps to address observations. Zepto has reaffirmed commitment to food safety hygiene and has even issued a statement to say that there have been routine food safety inspections that have been conducted by the authorities across the country, and they've said that they fully cooperated with these authorities during the inspection. They've even taken note of the observations and suggestions that were shared and are now taking the necessary steps to address them. Zepto says that it remains committed to continuously strengthening their processes and maintaining the highest standards of food safety as well as hygiene. Remember that this comes amid the big crackdown on Zepto's, of course, stores. We're also seeing an important update coming in. Remember that there were irregularities that were flagged, especially from Zepto's warehouses, that now went on to talk about how there could have even been expired materials that could have been stored by the food, in fact, platform. My colleague Ritu also now joins us on the broadcast. Ritu, a crucial update coming in, as I believe that Zepto has responded to allegations of there being, you know, material that is old and even expired. Walk us through the details. What is it that Zepto is saying?
15: आपको हम रिसीव करना।

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है।
6: कुछ इससे भी अनोखा
5: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
7: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
8: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
9: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
8: पुशअप चैलेंज किया जाए 28 29 30।
10: तुम भी कैसे टाइगर जैसे।

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: Hindustan mile Hindustan se
3: Desh ka tire, JK tire.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
6: सबका राजा आकर मसाला।
7: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
8: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
9: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
8: पुशअप चैलेंज किया जाए।
10: 28, 29, 30।
11: तुम भी कैसे टाइगर जैसे।

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आकर मसाला।
6: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
7: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
8: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
7: पुशअप चैलेंज किया जाए। 28, 29, 30।
9: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

1947 में हमें आजादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने की आजादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आजादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आजादी या इलाज को जरूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंग

0: होने की या हर चीज को छूने से पहले सैनिटाइजर यूज करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आजादी या उनसे माफी मांगने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं? नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आजादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आजादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि आजादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता, और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आजाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली, और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं एक बेहतर कल मिला था, हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आजाद थी। जय हिंद।
1: On that note, stepping into a short break, more news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
4: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
5: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
6: तुम भी कैसे?

0: Psychoactive substance test coming positive, and these technical failures as well. Of course, all of this remains open under investigation right now. The Aircraft Accident Investigation Bureau has initiated its investigation into the matter. Airbus and French agency teams have also flown in and have joined the investigation. We do know that Air India's former CEO was also summoned yesterday for questioning into the matter, and the minister has also, you know, spoken to the media and said that they are looking into this. However, at this point, it is really concerning with respect to passenger safety at large. A pilot's psychoactive substance test coming positive, and at the same time, concerns that are being alarmed about technical failures within the aircraft. To go a little bit into what exactly happened as per the pilot's defect report, after this, autopilot got disconnected, the pilot had to manually maneuver the aircraft. Mm-hmm. And to stabilize the situation, this is when, the stall, the 300 feet drop happened. And thereafter, what we were earlier hearing as severe turbulence, the word that we don't hear at all anywhere with respect to the incident, has come about. Back to you.
1: Tanushka, as always, thank you so much for clarifying the details for us. We'll, of course, revert to you for regular updates. All right, one sitting remains in the monsoon session and Parliament is still stuck on the same question. Will the House actually debate the issues that have brought it to a standstill? The government says it's ready. In fact, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says that Home Minister Amit Shah, he will respond to the opposition's questions on the student protests, including the July 20th police action. But the opposition says that is precisely what has not happened. Kiran Rijiju added that Rahul Gandhi should also respond to what happened in Jharkhand. The opposition is hitting back staunchly, saying it's the Home Minister Amit Shah who's running away from the House. The opposition basically wants the Home Minister in the House to answer for the police action against students in Delhi, while also demanding a debate over the donation theft row at Ram Temple. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in.
2: छात्र आंदोलन को लेकर के जो भी घटना हुई है पूर्ण रूप से डिटेल डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है. एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होंगे और गृहमंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गई और बाहर में जाकर के नारेबाजी लगाया और चर्चा होने नहीं दिया. तो अभी ये हमारे देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार है और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं.
3: इनजस्टिस हैपेंड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री. वो डन इट, वो ऑर्डर द बैलेट गन. दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द लास्ट 15-16 डेज इन द पार्लियामेंट. आवर होम मिनिस्टर इज रनिंग अवे. ही सिटिंग हियर एंड देयर, सिटिंग हियर एंड देयर, बट नॉट कमिंग इन टू द पार्लियामेंट. टू बिल इज देयर फॉर हिम, ही डिडंट कम एट ऑल. बेसिकली दिस इज अ टोटल फेलियर ऑफ ए होम मिनिस्टर for delivering his duty to the parliament.
4: बिल्कुल, राहुल गांधी जी एक भगोड़े साबित हो रहे हैं. रोज माननीय किरण रिजिजू उनको कह रहे हैं कि अमित शाह साहब रिप्लाई देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बैठिए तो, आप सुनिए तो. ये जवाब उन्होंने सुनना चाहिए और झारखंड में जो हो रहा है उसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए. मतलब एक जगह एक रूल और दूसरी जगह अलग कुछ, ये डबल स्टैंडर्ड रहा. तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आत्मपरीक्षण करना चाहिए और बहुत अपेक्षाएं रखकर सभी क्षेत्र के एमपीज आते हैं, अपने अपने प्रश्न रखने के लिए आते हैं और बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है. राज्यसभा में ट्रिब्यूनल का बिल हुआ लेकिन एक भी इंडिया गाड़ी का कोई उपस्थित नहीं था वहां और चर्चा में भाग भी नहीं लिया.
5: केवल ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है और चंदा चोरी, इससे देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान और धर्म से जुड़े व्यक्तियों की भावना आहत हुई. चंदा चोरी करने वाले लोग, चढ़ावा चोरी करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं है बल्कि भारतीय

0: जनता पार्टी की, आरएसएस की, छात्रों के ऊपर वो छात्र एक महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं, निहत्थे हैं और अपनी जायज मांग को लेकर के बैठे हैं, उन पर गोलियां कैसे चली, गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं, किसके निर्देश और आदेश से गोलियां चली, केवल यही दो मुद्दे हैं जिस पर सदन लगातार सदन में बात रखने से सरकार कतरा रही है।
1: All right, on that note, let's turn our attention to breaking news we're tracking this morning. Actor Piyush Mishra had questioned Nasiruddin Shah over his silence on the student protests in Jharkhand. And now BJP MP Kangna Ranaut has joined that fight, backing Mr. Mishra and launching a personal attack on Nasiruddin Shah. In an Instagram post, Kangna Ranaut says, "Everyone is, and I'm quoting her here, in some way, someone's dog, but says that she's proud to protect the country that feeds her." She's drawing parallels with Nasiruddin Shah there. She then accuses Nasiruddin Shah of eating this country's food. It's just distasteful what's coming in. And she says that she would rather be a dog than a fox like Nasiruddin Shah. You must note that just a few days ago, Kangna Ranaut was calling out Gen Z protesters in some of the harshest language we have heard from a sitting MP. She then flipped and called Gen Z the strength of the country a few days later. She had described videos from Jantar Mantar as puke-inducing. The same Kangna Ranaut questioned the upbringing of the protesters. She referred to young women as Generation Gutter. And now she's hitting out at Nasiruddin Shah. We've got Piyush Mishra's reaction lined up. Listen into that first before we get in a lowdown from Aishwarya Jain.
2: पड़ी हुई एक चीज के नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, आपने सीधे इसमें इसमें बात की थी नसीर साहब ने कि उसमें फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोग बोल नहीं रहे तो सालों में सीधे सीधे सीधे तीन है तो उन्होंने एक बात बोली थी कि दोस यू हैव बोन्स इन माउथ दे डोंट स्पीक, जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है माफ कीजिएगा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस वक्त और कुत्ते हैं जिनको मुझे हड्डी है।
1: Aishwarya Jain is with us at the moment. Aishwarya, how significant is this kind of rhetoric coming in from a sitting BJP MP after her own position on the student protests has changed significantly within a span of just a few days?
3: There were earlier statements as well from Bharatiya Janata Party MP and actor Kangna Ranaut over Nasiruddin Shah's commentary that we heard during the students' protests. In fact, Kangna Ranaut went on to say that these actors like Nasiruddin Shah have never spoken about what is happening in the state of Jharkhand, but perhaps they are speaking about the students' protest in Delhi. I'd rather be a dog than a fox like Nasiruddin is something that Kangna Ranaut had stated, slamming Nasiruddin Shah over the Jharkhand protest of students. It is also Piyush Mishra earlier, the actor who had stated and slammed Nasiruddin Shah, stating that during CJB protest, it was Nasir Saab remarked that the film industry wasn't speaking up during the agitation. Those who have bones in their mouths cannot speak. Please forgive Nasir Saab, but this is utmost, with utmost respect, he would like to ask that why he is not speaking on the Jharkhand students protest while he's already speaking about the Jantar Mantar protest. So yes, both Kangna Ranaut, the Bharatiya Janata Party MP and actor, and also now Piyush Mishra weighing in the entire controversy, slamming Nasiruddin Shah over a selective remarks that he has made of the students protest at Jantar Mantar.
1: Aishwarya, we'll of course continue to track all the reactions coming in with you and the finer developments. Thanks so much. All right, let's crucially now turn our attention to Jharkhand. A day after the lathi charge, the students in Ranchi were back on the streets, this time choosing silence as their weapon. They staged a silent march with mobile flashlights in their hands, a symbolic protest against police action on the 10th of August. And amid the political showdown, the Jharkhand Assembly was adjourned a day ahead of schedule, and the BJP cornered Chief Minister Hemant Soren, accusing his government of running away from questions. Mr. Soren, meanwhile, he has defended the steps taken by his government so far, assuring that students and their issues will be resolved. But the political blame game has widened, with former Education Minister Dharmendra Pradhan training his guns on Rahul Gandhi now, accusing him of double standards over the Jharkhand crackdown. Take a look at this political showdown.
4: झारखंड विधानसभा के फ्लोर पे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के इतने दिनों के आंदोलन के बाद, यानी कि 17 दिनों के आंदोलन के बाद, आज दो बड़े आश्वासन दिए हैं। पहला आश्वासन उनका यह है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो है, जिसकी वो मांग कर रहे हैं रद्द करने की, वो कह रहे हैं कि वो रद्द करने को तैयार हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि TDPL कंपनी जो है, उसने अभी तक जितने भी परीक्षाएँ आयोजित की हैं उस पर वो जाँच कराने को तैयार हैं। लेकिन इनकी जो एक मांग है, CBI इंक्वायरी की मांग है, उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए, यानी कि उस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है।
5: जी, उन्होंने अभी CBI पर कुछ नहीं बोली है, और हम लोगों का मुख्य मान पहले से तय था कि रिफॉर्म लाना है, CBI जांच करना है, और जितने भी TDPL द्वारा कंपनी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया उसको रद्द करना है। जो मेन मुद्दा था कि CBI जांच, लेकिन उन्होंने इसी पे कोई टिप्पणी नहीं किया है। तो सर, CID पे हम लोगों को तो भरोसा है नहीं, क्योंकि दो साल से हम लोग CID के भरोसे बैठे हुए हैं और अभी तक उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकते।
4: अगर जब तक CBI जाँच नहीं होती है, तब तक आपका क्या मानना है कि आंदोलन ऐसे ही चलेगा?
6: देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहेंगे। कारण क्या है कि छात्रों के आंदोलन के दबाव के कारण ही जो हमारे मुख्य मुद्दे थे उनमें से कुछ मुद्दों पे तो सहमति बनी, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन, आप पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप पहले ये बताइए कि राज्य के जो छात्र हैं वो CID जैसी एजेंसियों पे भरोसा क्यों करें? आखिर ऐसा आपने क्या स्थापित किया है हमारे राज्य में कि छात्र CID के ऊपर भरोसा कर ले? अगर हम पूर्व की परीक्षाओं को देखते हैं, उन परीक्षाओं में भी CID SIT की जांच हुई और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन उसका क्या प्रतिफलन मिला छात्रों को? इसके पूर्व JSSC CGL की परीक्षा में भी गठित हुआ एजेंसी का, उसका क्या परिणाम मिला? इसके पूर्व भी कई कमेटियाँ गठित हुई।
4: ये CBI जाँच की बात आज मुख्यमंत्री नहीं किया उन्होंने स्टेज से, उन्होंने बाकी जो बातें कही हैं विधानसभा के मंच पे, उन्होंने 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने की बात की, उसके अलावा जांच कराने की बात की, यानी कि वो हर परीक्षा जो TDPL ने जिस आयोजित किया है उसे जांच कराने की बात की, लेकिन CBI जांच, जो कि छात्रों का एक मुख्य मुद्दा है, उस पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। छात्रों का कहना है, ये कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, इनका कहना है कि जब तक वो मांग भी हमारी नहीं मानी जाती है, तब तक अनवरत जो है रांची में छात्रों का आंदोलन चलता रहेगा।
7: मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर, बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदमे आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। और कल जिस तरीके से सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच में पूरा दिन भर का समय व्यतीत हुआ,
8: आप लोग सदन में व्यवस्था कायम होने नहीं दीजिएगा, सदन की व्यवस्था को कायम करने नहीं दीजिएगा एकदम।
7: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे।
9: एक तो उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से बात की, साथ ही साथ ये भी कहा कि हम कोई भी किसी लाठी, अगर लाठी चार्ज उसका भी हम विरोध करते हैं, किसी की भी सरकार हो, लगातार वो है। लेकिन ये लोग किसी से बात किए क्या? नीट इतना बड़ा कांड हुआ तो वहां माफी तो छोड़ दिया, जयकार के नारे लगा रहे हैं। उस समय कोई भारत बंद या दिल्ली बंद की उन्होंने बातें नहीं की, राज झारखंड बंद चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अवसर इसमें ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया है।

0: तो मैं छात्रों से ही कहना चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए, आपकी मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं और आपके समस्याओं का निदान हम करना चाहते हैं, क्योंकि उस दर्द को मैंने देखा है, उस दर्द को मैंने झेला है और उस उनके दर्द को मैं सबसे पहले सदन में, विधानसभा में मैंने उठाया है।
1: तो ये लगा कि उन्होंने पूरी तय करके रखे हुए थे कि आज हमको विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे, और इसलिए जनता के और बच्चों का इस सवाल से सरकार भाग रही है, उस पर वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। भाई कार्रवाई क्या करेंगे, सीआईडी क्या जांच करेंगे? सीआईडी वाले ने तो सब गुड़ गोबड़ कर रखा है, यानी जान बूझ करके आप मामले को दबाए हुए हो, क्योंकि लगता है कि आप बड़े लोगों को बचाने के प्रयास में। ख्यांते का तो रिजिग्नेशन हो गया, लेकिन जेसीसी में जो प्रभारी चेयरमैन कौन है, उन्हीं का आईएएस ऑफिसर सचिव है किसी भी विभाग में, प्रशांत कुमार, उनके कालखंड में ये सारे गड़बड़ियां हुई, वो कब रिजाइन देंगे, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, ये मन को बताना चाहिए।
2: ओके, सो व्हेन क्वेश्चंस वर रेज्ड अबाउट द क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स ऑन द 10th ऑफ ऑगस्ट, द कांग्रेसस रिस्पांस वाज डिनायल। झारखंड मिनिस्टर इरफान अंसारी डिनाइड दैट द पुलिस यूज्ड फोर्स अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, क्लेमिंग दैट व्हाइल पुलिस पर्सनल वर बीइंग बीटन, दे डिड नॉट इनिशिएट एनी एक्शन। पद्मजा जोशी पुट दैट क्लेम टू टेस्ट विद द झारखंड मिनिस्टर कन्फ्रंटिंग हिम। लिसन इन।
3: इरफान अंसारी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछेंगे कि आपने आज साफ साफ बोल दिया कि हम पिटते जा रहे थे, यानी कि पुलिस पिटती जा रही थी, लेकिन लाठीचार्ज नहीं हुआ, बल प्रयोग नहीं हुआ। जो वीडियो आ रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज हुआ झारखंड में या नहीं हुआ?
4: मैम मेरी बात सुनिए ना मैडम, देखिए मैं सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर खुद हूँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। अगर लाठी, एक बार सुनिए, अगर लाठीचार्ज हुआ मैडम तो कितने लोग घायल हुए, इसकी पुष्टि है कि आपके पास? केवल दो बच्चे आए हमारे पास, वो भी उनको भूख लगा था, भूख स्ट्राइक पे थे, किसी को चोट नहीं लगी मैम। चोट किसको लगी? पुलिस को लगी। पुलिस अगर नहीं चाहती मैम, अगर मान लीजिए पुलिस अगर चाहती तो बच्चे क्रॉस नहीं कर सकते, लाइन लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते। आप बताइए, विधानसभा के अंदर तक बच्चे आ गए, आप हमारी सहनशीलता का परिचय ले रहे हैं? केवल ड्यू टू राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, कोई अटैक नहीं करेगा, और जब रात में जब वहां पर भाजपा के लोग आ गए, युवा मोर्चा के लोग आ गए, वो लोग ड्रामा करने लगे, वो लोग हिंसा करने लगे, वो लोग तोड़फोड़ करने लगे, इसके बचाव में भी फिर भी पुलिस ने शांतिपूर्वक उनको भगाया वहां से। उसके बाद आप लोग क्या क्या मैसेज दिखा रहे हैं कि लाठीचार्ज लाठीचार्ज, ये बंदूक चार्ज नहीं हुआ है, ये AK-47 चार्ज नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली है वहां पर। हम लोगों ने पीसफुली हम लोगों ने वार्ता किया, और मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड मैडम देखिए, जो बच्चे आंदोलनकारी हैं, हम लोग वार्ता कर रहे हैं, 95% हम लोगों ने मांग उनकी मान ली है, कुछ आगे पीछे वार्ता चल रही है, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है, भाजपा मजा ले रही है। हुआ ये भाजपा, आपको जब युवा नहीं चाह रहा है, आपको जब झारखंड की जनता नहीं चाह रही है, तो आप क्यों बीच में आ रहे हो भाई? आप नकली हितैषी क्यों बन रहे हो? आप सिंपैथी लेने की बात क्यों कर रहे हो?
2: ऑलराइट, ऑन दैट नोट, लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वी आर ट्रैकिंग दिस मॉर्निंग। Two people, including a 2.5-year-old child, have died after a fire broke out on the 11th floor of a high-rise building in Mumbai's Vile Parle West. 6 others have been injured in this fire, and we are told this fire broke out late at night in 2 flats on the 11th floor and the 12-story Shanta Bhavan building on Church Road. 8 people were reported injured initially. 2 were taken to Cooper Hospital, 6 to Nanavati Hospital. My colleague Sujata Dwivedi has been tracking the latest developments for us. She joins us live with the clarity we need currently. Sujata, take us through the latest details, tragic updates coming in. Do we know what may have caused this fire?
5: Yes, as per the data and the information that has been shared by the BMC, it is being told that because of electric short circuit that took place on the 11th floor of that high-rise tower, it resulted into the fire spreading across 4,000 square meter of area, which resulted into 8 people getting injured. They were shifted to Cooper and Nanavati Hospital, out of which 6 were discharged after minor burns, but 2 people, and out of which one is a 2.5-year-old baby, they lost their life. These 2 individuals who were present in that building were tried, and rescue operations were done by the Mumbai Fire Brigade team, but unfortunately they couldn't be saved, and as per the electric confinement that took place, it resulted into the fire spreading rapidly.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
9: अरे मेरे राजा।
10: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
11: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
12: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
13: पुशअप चैलेंज किया जाए। 28, 29, 30।
14: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।
15: Launch control, 0 to 100.
16: This isn't just about cars and bikes. This is about how

0: get in clicked on a camera or anything like that. I've never seen someone. And his major concern was not to stop the flight and provide everyone medical treatment. His major thing was to land back in Delhi, so he didn't have to get any questions around or anything like that. So he did not do any emergency landing anywhere else.
1: My colleague Tanushka Datta joins us with clarity on the several strands to this investigation. Tanushka, a positive drug test, the co-pilot reportedly describing technical abnormalities. Meanwhile, the pilot was reportedly not in his seat when the aircraft lost altitude. The cabin crew also reportedly raised concerns about his behavior during the flight. Bring us up to date with what's going on as far as this probe is concerned.
2: Precisely, Parmeshwar, there's a lot of facets to this incident at this point. What was initially called as severe air turbulence has turned out to be, have a positive drug test report, psychoactive substance report has confirmed of the pilot being positive with marijuana in his bloodstream. And at the same time, we also have reports that indicate towards technical failures within the aircraft. So definitely a big question on passenger safety right now as to what exactly happened, what led to the drop in 300 feet of altitude. Was it the pilot's conduct with respect to his dope test, or were these technical failures that were already there within the A320 Airbus? But currently, what we do also know about, as per our sources, is that the cabin crew flight did file a complaint with the airline against the pilot in command's behavior on flight. And the young co-pilot in this situation had to single-handedly steady the aircraft and then land safely at the destination. So a lot of questions here at this point. The Aircraft Accident Investigation Bureau has initiated its investigation into the matter. And Airbus and a French agency team has also flown in and joined the investigation here. Yesterday, Air India's former CEO, Campbell Wilson, was also summoned to the ministry for questioning. So a lot is happening on this front, and it's definitely concerning with respect to the pilot's dope test coming out to be positive with marijuana. In his pilot defect report, he also submitted about a triple hydraulic failure on board, which is what primarily caused this drop in altitude of 300 feet. This is as per the preliminary defect report submitted by the pilot. But definitely, broadly remains, was this an error on part of the pilot in terms of his dope test or a technical failure within the aircraft? Back to you.
1: We'll, of course, continue to track the final report and the finer details with you. As always, Tanushka, thank you so much. On that note, let's turn our attention now to Parliament, which is still stuck on the same question. Will the House actually debate the issues that have brought it to a standstill? The government says it's ready. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says that Home Minister Amit Shah will respond to the opposition's questions on the student protests, including the July 20th police action. But the opposition says that is precisely what has not happened. Kiran Rijiju added that Rahul Gandhi should also respond to what happened in Jharkhand meanwhile. And the opposition has hit back sharply, saying it's the Home Minister Amit Shah who's running away from the House. The opposition wants the Home Minister in the House to answer for the police action against students in Delhi, while also demanding a debate over the donation theft row at Ram Temple. The government says that Amit Shah is ready to respond, but the opposition says Amit Shah is avoiding the House.
3: छात्र आंदोलन को लेकर के जो भी घटना हुई है पूर्ण रूप से डिटेल डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होंगे और गृहमंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गई और बाहर में जाकर के नारेबाजी लगाया और चर्चा होने नहीं दिया तो अभी ये हमारा देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं
4: इनजस्टिस हैपेंड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री हु डन इट हु ऑर्डर द बैलेट गन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द लास्ट 15-16 डेज इन द पार्लियामेंट आवर होम मिनिस्टर इज रनिंग अवे ही इज सिटिंग हियर एंड देयर बट नॉट कमिंग इन टू द पार्लियामेंट टू बिल इज देयर फॉर हिम He didn't come at all. No, basically, this is a total failure of a Home Minister for delivering his duty to the Parliament.
5: बिल्कुल, राहुल गांधी जी एक भगोड़े साबित हो रहे हैं। रोज माननीय किरण रिजिजू उनको कह रहे हैं कि अमित शाह साहब रिप्लाई देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बैठिए तो, आप सुनिए तो, ये जवाब उन्होंने सुनना चाहिए। और झारखंड में जो हो रहा है उसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए। मतलब एक जगह एक रूल और दूसरी जगह अलग कुछ, ये डबल स्टैंडर्ड रहा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आत्मपरीक्षण करना चाहिए। और बहुत अपेक्षाएं रखकर सभी क्षेत्र के एमपीज आते हैं, अपने अपने प्रश्न रखने के लिए आते हैं। और बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में ट्रिब्यूनल का बिल हुआ, लेकिन एक भी इंडिया गाड़ी का कोई उपस्थित नहीं था वहां, और चर्चा में भाग भी नहीं लिया।
6: केवल ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है और चंदा चोरी, इससे देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान और धर्म से जुड़े व्यक्तियों की भावना आहत हुई। चंदा चोरी करने वाले लोग, चढ़ावा चोरी करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, छात्रों के ऊपर।
1: ऑलराइट, लेट्स स्विच ट्रैक्स नाउ। At the moment, the TVK chief and chief minister of Tamil Nadu is addressing the assembly. We're told he's moved a resolution regarding delimitation and women's reservation. Let's listen into the live proceedings.
7: சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துகிறது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, டீலிமிட்டேஷன் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம்
8: மாநிலங்களவையினர்களுடன்
7: தமிழ்நாடு அரசால் நமது தலைமையில் 8/8/2026 அன்று கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடந்துச்சு. அந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அனைத்து மக்களவை மற்றும் மாநில உறுப்பினர்களுக்கும் அழைப்பு
8: விடுக்கப்பட்டது.
7: இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் இரண்டு உறுப்பினர்களும்
8: காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி
7: உறுப்பினர்களும்
8: சிபிஎம்
7: கட்சியின் உறுப்பினரும்
8: இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக்
7: கழகத்தின் உறுப்பினரும் என ஆறு கட்சிகளை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றாங்க. இந்த கூட்டத்தில் டீலிமிட்டேஷன் தொடர்பாக
8: விரிவாக
7: தமிழ்நாடு மற்றும் தென் மாநிலங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்தும் அதை சரி செய்யறதுக்கான
8: இந்தியாவில்
7: பொது தேர்தல்
8: தொடர்ந்து அசம்பிளி
7: ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படுற சென்சஸ் டீடைல்ஸ் படி மக்களவை மற்றும் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை மறுசீரமைப்பு செஞ்சு 1976 வரை தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில்
8: 1971
7: மக்கள் தொகையை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தும் மாநிலங்களுக்கு டீலிமிட்டேஷன் காரணமாக மக்களவை உறுப்பினர் எண்ணிக்கையில் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக அடுத்த 25 வருஷத்துக்கு 1971 சென்சஸ்
8: which implemented population control scheme shouldn't get affected. So there was a 25 years freeze.
7: மற்றும் 87வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் 1971 சென்சஸ் படி மக்களவை தொகுதிகள்
8: நிலைநிறுத்தப்பட்டு
7: மாநிலங்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கிறது தான். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கடந்த 50 வருஷமா இருந்து வந்த டீலிமிட்டேஷன் தடையை அகற்றி 2011 அடிப்படையில் மக்களவை தொகுதி
8: நிர்ணயிக்க
7: நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதா ஏப்ரல் 2026 அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு மசோதா தோல்வி. இப்ப மீண்டும் ஒன்றிய அரசு

0: Air India flight I-2379 faces a major twist with the pilot.
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
7: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
8: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
9: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
10: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
11: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
12: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
13: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious.

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे? टाइगर, टाइगर,

0: from Phuket to New Delhi, but dropped 300 feet, and this was right above Odisha. Now, in a major twist, the pilot has tested positive for marijuana in a second drug test. Do remember that he had, not a negative test when the first test was taken. In the second test, he has tested positive for marijuana. The findings have raised fresh questions over aviation safety. And it is President Trump who confirms that his plane was swished in Turkey on the 8th of August amid possible threats coming his way. Says that he was just following advice of the Secret Service. He does what they ask him to do. And I quote, I just go by the Secret Service. Don't really ask too many questions. I get a lot of threats. And starting with our top story is Prime Minister Modi releasing the autobiography of the former president, Shri Ramnath Kovind, a titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggle. So there we have Prime Minister Modi there releasing that book of the former president of India, Shri Ramnath Kovind, that has been titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggle. So this is happening just before the parliament session that is to resume at 11 o'clock this morning. Let's just listen in to Prime Minister Modi.
1: उनके इस आचरण में दुनिया के सामने भारत के संस्कारों की ऐसी तस्वीर सामने रखी है जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है. साथियों, गुलामी के सैकड़ों साल में हमारे देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कुछ खोया था. हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया. महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था. एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित को शिखर तक पहुंचने का अवसर मिल सके. कोविंद जी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने श्रम और काबिलियत से केवल खुद का जीवन ही बदला, इतना नहीं है, उन्होंने सदियों के उन स्वप्नों को, उस विजन को भी साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है. और इस दिशा में हम सबके प्रयास अभी भी जारी है. हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे. इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा. यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा. साथियों, ऐसे युवा शक्ति के निर्माण के लिए जो प्रेरणा चाहिए, कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी उसका अहम स्रोत बन सकती है. साथियों, कोविंद जी ने अपने जीवन में मोरारजी भाई देसाई के साथ अनुभवों के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया है. कोविंद जी के भीतर देश सेवा की जो भावना थी, मोरारजी भाई के साथ काम करके उन्होंने जो सीखने को मिला, जो रास्ता मिला, कोविंद जी ने राजनीति और समाज सेवा को अपना मार्ग बनाया. वो अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित रहे. सेवा को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाकर काम किया. संसद में उनका कार्यकाल गवाह है. राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, राष्ट्रपति के रूप में भी हमें उनकी यही कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती रही है।

का समाधान देश के लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू कर सकता है। मैं मानता हूं कोविंद जी की इस कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से देश के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हुए ऑटोबायोग्राफी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता, कैसे वही आदर्श आगे चलकर हमारे जीवन का आधार बनते हैं, हमारे कठिन समय के मूल्य किस तरह जीवन भर में हमें रोशनी देते रहते हैं, कैसे इस पवित्रता से हमें राष्ट्र सेवा की शक्ति मिलती है। अलग अलग पदों का दायित्व निभाते हुए कोविंद जी ने समाज को निरंतर इसकी प्रेरणा दी है। साथियों, मुझे विश्वास है कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी इसमें उनके जीवन की ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी अहम स्मृतियां सुरक्षित होंगी। मैं एक बार फिर उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं खासकर के युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है,

0: सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का, और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कोविंद जी की जो मेहनत है वो आने वाली पीढ़ियों को काम आए, युवा पीढ़ी को विशेष रूप से काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्प्रेरक विचारों के लिए हार्दिक आभार।
2: Autobiography of the former President Ramnath Kovind, Triumph of the Indian Republic, as the Prime Minister describes the book, is about his inspiring life and efforts to serve society, providing insights into his values, his experiences and circumstances that shaped his journey and his public service. Tracing his experiences as well as his achievements, Ramnath Kovind served the President from July of 2017 until July of 2022. He was the first person from Uttar Pradesh as well as the first person from the BJP to hold the top constitutional post in the country, prior to which he served as the governor of Bihar from 2015 to 2017. So those are visuals of the Prime Minister inaugurating the book, releasing the book that has been written by Ramnath Kovind, the 14th president of India. This was a book that has, you know, all his struggles, his achievements, his promises, his values, all put down in this book. A must read is how the Prime Minister

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony,

0: Talk in the parliament shows no signs of ending. The government says it's ready for a detailed discussion on the student protests. We have Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju saying that the Home Minister Amit Shah is ready to respond in the House, not just on the issue of the 20th of July, as far as the police action is concerned, but on everything related to students' protest. He's further stated that Rahul Gandhi should also respond to what happened in the state of Jharkhand. The opposition, of course, has hit back, saying that it's the Home Minister who's running away from the House. They continue to demand a debate on both the Ram Temple Chanda Chori as well as the alleged police brutality on students here in Delhi at Jantar Mantar on the 20th of last month. And as the monsoon session heads into its final day, the question really is who is running away from that very debate.
1: छात्र आंदोलन को लेकर के जो भी घटना हुई है पूर्ण रूप से डिटेल डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है. एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होंगे और गृहमंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गई और बाहर में जाकर के नारेबाजी लगाया और चर्चा होने नहीं दिया. तो अभी ये हमारा देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार है और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं.
2: इनजस्टिस हैपेंड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री. हु डन इट? हु ऑर्डर द बैलेट गन? दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द लास्ट 15-16 डेज इन द पार्लियामेंट. आवर होम मिनिस्टर इज रनिंग अवे. ही सिटिंग हियर एंड देयर, सिटिंग हियर एंड देयर, बट नॉट कमिंग इन टू द पार्लियामेंट. टू बिल इज देयर फॉर हिम. He didn't come at all. So basically, this is a total failure of a Home Minister for delivering his duty to the Parliament.
3: बिल्कुल, राहुल गांधी जी एक भगोड़े साबित हो रहे हैं. रोज माननीय किरण रिजिजू उनको कह रहे हैं कि अमित शाह साहब रिप्लाई देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बैठिए तो, आप सुनिए तो. ये जवाब उन्होंने सुनना चाहिए और झारखंड में जो हो रहा है उसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए. मतलब एक जगह एक रूल और दूसरी जगह अलग कुछ, ये डबल स्टैंडर्ड रहा. तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आत्मपरीक्षण करना चाहिए और बहुत अपेक्षाएं रखकर सभी क्षेत्र के एमपीज आते हैं, अपने अपने प्रश्न रखने के लिए आते हैं और बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है. राज्यसभा में ट्रिब्यूनल का बिल हुआ लेकिन एक भी इंडिया गाड़ी का कोई उपस्थित नहीं था वहां और चर्चा में भाग भी नहीं लिया.
4: केवल ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है और चंदा चोरी, इससे देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान और धर्म से जुड़े व्यक्तियों की भावना आहत हुई. चंदा चोरी करने वाले लोग, चढ़ावा चोरी करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के छात्रों के ऊपर. वो छात्र एक महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं, निहत्थे हैं और अपनी जायज मांग को लेकर के बैठे हैं. उन पर गोलियां कैसे चली, गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं, किसके निर्देश और आदेश से गोलियां चली, केवल यही दो मुद्दे हैं जिस पर सदन लगातार सदन में बात रखने से सरकार कतरा रही है.
0: Switching tracks now, is actor turned politician Kangana Ranaut, who has launched a sharp attack on veteran actor Nasiruddin Shah, questioning his silence over the ongoing protests in Jharkhand. Kangana has accused Nasiruddin Shah of speaking up for issues concerning a neighbouring country while staying silent as to the agitation that's taking place here in Jharkhand. Do remember, he'd been very vocal when it came to the Jantar Mantar issue in the national capital. She also hit back at his earlier remarks around actors being dogs with bones in their mouths, calling Shah a fox. Then we also have Piyush Mishra speaking during his visit to Ranchi, questioning the silence of the actor, referring to Nasiruddin Shah's earlier, those who have bones in their mouths, they don't speak. well, you know, asking as to which are the other dogs who can't speak is what is now being asked by Piyush Mishra.
5: नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, आपने सीधे इसमें बात की थी नसीर साहब ने कि उसमें फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोग बोल नहीं रहे उस सालों में सीधे सीधे सीधे उन्होंने एक बात बोली थी कि those who have bones in mouth they don't speak, जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वो बोल नहीं पाते. माफ कीजिएगा नसीर साहब, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस बात और कुत्ते हैं जिनको यूनिवर्सिटी है.
0: Let's just get you, you know, in regard to the protest that is taking place in Ranchi, a day after that lathi charge, the students in Ranchi were back on the streets, this time choosing silence as their weapon. They staged a silent march with mobile flashlights in hand, a symbolic protest against the police action that took place on the 10th of August. Amid the political showdown, the Jharkhand Assembly has been adjourned. And this is, of course, a day ahead of schedule. The BJP cornered the Chief Minister, Hemant Soren, accusing his government of running away from questions. Meanwhile, is Hemant Soren defending the steps taken by the government so far, assuring that the students and their issues will be resolved. But the political blame game has now only widened, with former Education Minister Dharmendra Pradhan training his guns on Rahul Gandhi, accusing him of double standards over the crackdown in Jharkhand.
6: झारखंड विधानसभा के फ्लोर पे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के इतने दिनों के आंदोलन के बाद, यानी कि 17 दिनों के आंदोलन के बाद, आज दो बड़े आश्वासन दिए हैं. पहला आश्वासन उनका ये है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो है, जिसकी वो मांग कर रहे हैं रद्द करने की, वो कह रहे हैं कि वो रद्द करने को तैयार हैं. दूसरा, उन्होंने कहा है कि TDPL कंपनी जो है, उसने अभी तक जितने भी परीक्षाएँ आयोजित की हैं उस पर वो जाँच कराने को तैयार हैं. लेकिन इनकी जो एक मांग है, CBI इंक्वायरी की मांग है, उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए, यानी कि उस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है.
7: जी, उन्होंने अभी CBI पर कुछ नहीं बोली है. और हम लोगों का मुख्यमंत्री पहले से तय था कि रिफॉर्म लाना है, CBI जांच करना है और जितने भी TDPL द्वारा कंपनी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया उसको रद्द करना है, जो मेन मुद्दा था कि CBI जांच. लेकिन उन्होंने इसी पे कोई टिप्पणी नहीं किया है. तो सर, CID पे हम लोगों को तो भरोसा है नहीं, क्योंकि दो साल से हम लोग CID के भरोसे बैठे हुए हैं और अभी तक उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकते.
6: अगर जब तक CBI जाँच नहीं होती है तब तक आपका क्या मानना है कि आंदोलन ऐसे ही चलता है?
8: देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहेंगे. कारण क्या है कि छात्रों के आंदोलन के दबाव के कारण ही जो हमारे मुख्य मुद्दे थे उनमें से कुछ मुद्दों पे तो सहमति बनी. लेकिन साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन, आप पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप पहले ये बताइए कि राज्य के जो छात्र हैं वो CID जैसी एजेंसियों पे भरोसा क्यों करें? आखिर ऐसा आपने क्या स्थापित किया है हमारे राज्य में कि छात्र CID के ऊपर भरोसा कर ले? अगर हम पूर्व की परीक्षाओं को देखते हैं, उन परीक्षाओं में भी CID SIT की जांच हुई और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन उसका क्या प्रतिफलन मिला छात्रों को? इसके पूर्व JSSC CGL की परीक्षा में भी गठित हुआ एजेंसी का, उसका क्या परिणाम मिला? इसके पूर्व भी कई कमेटियाँ गठित हुई.
6: ये CBI जाँच की बात आज मुख्यमंत्री नहीं किया उन्होंने स्टेज से. उन्होंने बाकी जो बातें कही हैं विधानसभा के मंच पे, उन्होंने 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने की बात की, उसके अलावा जांच कराने की बात की, यानी कि वो हर परीक्षा जो TDPL ने जिस आयोजित किया है उसे जांच कराने की बात की. लेकिन CBI जांच, जो कि छात्रों का एक मुख्य मुद्दा है, उस पर सरकार ने चुप्पी साध ली है. छात्रों का कहना है, ये कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, इनका कहना है कि जब तक वो मांग भी हमारी नहीं मानी जाती है तब तक अनवरत जो है रांची में छात्रों का आंदोलन चलता रहेगा.
9: मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर, बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है. हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं. लेकिन कोई चिंता नहीं, और कल जिस तरीके से सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच में

0: पूरा दिन भर का समय व्यतीत हुआ।
1: आप लोग सदन में व्यवस्था कायम होने नहीं दीजिएगा, सदन की व्यवस्था को कायम करने नहीं दीजिएगा एकदम।
0: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे।
2: तो ये लगा कि उन्होंने पूरी तय करके रखे हुए थे कि आज हमको विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे, और इसलिए जनता के और बच्चों का इस सवाल से सरकार भाग रही है, उस पर वो कार्रवाई नहीं करना चाहती। भाई कार्रवाई क्या करेंगे, सीआईडी क्या जांच करेगी? सीआईडी वाले ने तो सब गुड़ गोबड़ कर रखा है, यानी जान बूझ करके आप मामले को दबाए हुए हो, क्योंकि लगता है कि आप बड़े लोगों को बचाने के प्रयास में। ख्यांते का तो रिजनेशन हो गया, लेकिन जेसीसी में जो प्रभारी चेयरमैन कौन है, उन्हीं का ये अफसर सचिव है किसी भी बात में, प्रशांत कुमार, उनके कालखंड में ये सारे गड़बड़ियां हुई, वो कब रिजाइन देंगे, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, ये हेमंत सोरेन को बताना चाहिए।
3: Switching tracks now to Maharashtra, very tragic news coming in of a landslide that's taken place in Kurla, in which many people are afraid they remain trapped. People have died, two people have died in the Kurla landslide. According to the DCP, 4 to 5 people are still feared to be trapped under the debris. In fact, to know more as to what is really happening here, we have Sujata, my colleague, joining us. Sujata, very, very tragic news coming in. But first, let's just get you an account of what the witnesses are saying, what the authorities are saying on the matter.
4: लगभग 3-4 घरों के ऊपर ये पत्थर गिरे, जिसमें से दो लोगों का डेथ हुआ है। बॉडी अभी हमने राजौड़ी भेज दिया है अभी, और दो लोग इंजर्ड है जो राजौड़ी में एडमिट है, और लगभग अंदर 5 से 6 लोग अंदर फंसे होने की आशंका है। जो मेरी जानकारी है यहाँ के लोगों से जो मैंने जानकारी ली, तो लगभग 6 लोग अंदर है। एक फैमिली के 4 लोग है, एक फैमिली का एक लड़का है और उसका दोस्त, ऐसे 6 लोग अंदर फंसे हुए हैं। एक ही आदमी अंदर जा सकता है, इतनी सी जगह है, जिसकी वजह से अंदर कार्य करने में बहुत समय लग रहा है। ऊपर से बारिश भी चल रही थी सवेरे तक, अभी तो बारिश थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन अंदर से एक एक पत्थर तोड़ तोड़ के बाहर निकाल के 1-to-1 आदमी के पास से भेज के ये बाहर निकाला जा रहा है, तो थोड़ा उसमें समय जाने की आशंका है।
5: घाटकोपर पुलिस थाने के एरिया में अशोक नगर, यहाँ पे एक जैसी टेकड़ी है, वो टेकड़ी के नीचे जो घर थे लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पे वो उसके नीचे दब गए। वहाँ पे से अभी तक 2 शव हमने बाहर निकाले, उनको हॉस्पिटल में भेजा है, और नीचे 3-4 लोग और होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड, बीएमसी और पुलिस यहाँ पे तैनात है रात को 3 बजे से, और स्थानीय लोगों के साथ में मिलकर के यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है।
3: Sujata joining us to get us details. Sujata, a 14-year-old teenager and a 28-year-old's life has been cut short by this tragedy. Get us details of those who continue to be trapped and the others who have been taken to hospital.
6: Well, yes, unfortunately, so far 5 people have lost their life because of this dangerous landslide that took place today morning at around 3:15 a.m. after which the rescue operation began, and until now the NDRF, SDRF, the Mumbai police as well as the fire brigade teams are at the spot to rescue people who are currently trapped in the debris, in the rubble. And let me tell you that because of the dangerous terrain that is situated right here in Sakinaka, Kurla, where we are present, it is one of the most dangerous regions of Mumbai, including other areas like Asalfa, which is also located just a few kilometers from here. And these dangerous mountains on which two people live, and they have been living here for years, though the BMC issues them notice every year telling them that this is a dangerous spot and they must vacate them, yet the people say that they have no other place to go to, and the reason why they continue to reside there with their family. And this time it claimed the life by in the night when all of them were asleep. The Mumbai police is trying to ensure that everything is in coordination and all of the families have been assisted to safer spaces. The BMC has reiterated that every year they continue to warn people at such dangerous spots and they ask them to vacate their homes. However, they don't. Whereas activists on the ground have been saying that there are several of the flats, the rescue flats, which are vacant, but yet people are not being shifted there. Who have they been kept for? The BMC has announced an ex gratia of 4 lakh rupees, whereas the district collector's office is too going to give an amount of 3 lakh rupees to the deceased family, whereas the others who are currently at the hospital, they are being treated, the injured are given the necessary treatment, and also the rescue operations which are being done by the NDRF, the police say that more 3 to 4 people are likely to be stuck in the rubble, and for them, the rescue operations are still ongoing, and we expect an update soon. Back to you.
3: Right. Despite the kind of advisories that have been in place during the monsoon season by the BMC in order to avoid such incidents. Thank you so much, Sujata, for getting us those details. Switching tracks now is Cristiano Ronaldo and his girlfriend Georgina Rodriguez, who are married. The Portuguese football star and Rodriguez tied the knot in an intimate civil ceremony which took place in Portugal on the 11th of August, just yesterday, after nearly 10 years of being together. The couple confirmed the marriage through a joint Instagram post showing them dressed in white and displaying their wedding rings. Now, this was a private ceremony that was attended by their 5 children, keeping the focus on family rather than a large celebrity celebration.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तम्बी कैसे? टाइगर जैसे।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम?
2: सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, NDTV स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th BCS रत्न अवार्ड्स 2025-26।
3: तैयार हो जाए, पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूँ, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, NDA की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक, हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज़ लिखूंगा और हर चीज़ का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
4: Speaking to the media, stating that the ball is now in the opposition's court, he has made it ample.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
5: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
4: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the network of impact.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight.

0: monsoon session of Parliament ends tomorrow, but the deadlok in Parliament continues. The Lok Sabha has been adjourned, the Rajya Sabha adjourned till 2 o'clock. In about 57 minutes from now, it will resume. Now, the Home Minister, Amit Shah, has said the government is ready for a discussion on all issues. Close to noon, he made that statement. It's his first statement made by the Home Minister on this issue that has the opposition MPs protesting inside Parliament and outside. Amit Shah insisted that the government has nothing to hide. He says he will answer all questions and put the facts on record. Meanwhile, Leader of Opposition of the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has hit back demanding answers from Amit Shah over alleged police action against protesters on the 20th of July, asking who ordered the firing, the pellet guns and the lathi charge. Now, with both sides trading blame, the focus is firmly on Amit Shah and whether he will answer the opposition's questions in the House. But even before that, will the opposition MPs allow that discussion in Parliament is the bigger question.
1: देखिए सबसे पहले तो लापता भाग गए इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं मेरी चैम्बर में बैठा हूं चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में तो कोई जाकर क्या करेगा जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए पहले तो ये यही मांग कर रहे थे हमने हाँ बोल दिया मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते
2: मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent.
3: बताइए आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं उनकी एक मांग है आप उन पे लाठी बरसाते हो आप उन पे पैलेट गन चलाते हो बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति तो हम चुप बैठे हैं बस आप लोगों की तरह जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे हैं ये चाहते हैं आप
4: अमित शाह की स्टेटमेंट के अमित शाह को तो इस्तीफा देना पड़ेगा स्टेटमेंट की बात छोड़ दीजिए भविष्य में ये नौबत आने वाली है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ने वाला आप देखिए क्या होता है इतना आसान नहीं है
5: गृह मंत्री जी शुरू से यहाँ पे जवाब देने को तैयार है पर उनकी एक ही शर्त है कि आप धैर्य से पूरी चर्चा सुनोगे और धैर्य से संसद चलने जरूरत हो ये चलाना नहीं चाहते क्योंकि इनका असली मुद्दा है FCRA बिल राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए जॉर्ज सोरेस से पैसे लिए यहाँ तक कि जो देशद्रोही है जाकिर नायक उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं
6: देखिए HM आए सदन में कोई बहुत एहसान नहीं करेंगे ये उनका संवैधानिक दायित्व तो है कि वो आए सदन में बुलाने की क्या जरूरत है जब उनसे संबंधित विभाग पर हो तो उनको रहना चाहिए ये उनका दायित्व तो है संवैधानिक कर्तव्य है वो बताएं कि इन पर जो विभत्स हिंसा हुई है बच्चों के साथ जंतर मंतर उस पर जवाब दें चढ़ावा चंदा भगवान राम के मंदिर का जो चोरी हो रहा था, चोरी हो रहा है, निर्माण के दिन से जमीनों का जो घपला हुआ, 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में एक ही दिन में बिक गई, तो इन सारों पे वो जवाब दे।

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
0: नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
5: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज।
4: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
5: बैठ सकता हूँ आपके साथ? खाइए ना प्लीज।
4: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: eventuality that he was culpable, he ordered it, even then he should resign. In fact, we've got somebody here who in Jharkhand is engaging continuously with the students who are sitting in protest. And it's a very interesting situation that the Congress finds itself in, because you've got the students also in Jharkhand sitting, they are agitating. Ms. Deepika Pandey, thank you very much for speaking to us. So now the Home Minister is saying कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं लोक सभा में. क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अब चर्चा में आना चाहिए?
1: कांग्रेस को चर्चा की मांग कांग्रेस काफी समय से कर रही थी, लेकिन होम मिनिस्टर क्यों चर्चा पे तैयार नहीं थे ये सबको समझ में आता है. झारखंड के माध्यम से उन्होंने झारखंड के माध्यम से एक माहौल बनाने का प्रयास भाजपा के पक्ष में किया है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए. आप जंतर मंतर पर भी रही होंगी और आज झारखंड में भी हैं. पूरा नेशनल मीडिया ये ढूंढते रह गया कि कोई एक ऐसा फुटेज मिले जहां कोई मेल पुलिस वाला किसी स्टूडेंट को थप्पड़ मार रहा हो, कहीं कोई पुलिस वाला किसी महिला के पीछे डंडे से दुर्व्यवहार कर रहा हो, या कोई ऐसा मामला जहां बर्बरता से पुलिस वाला लाठी चला रहा है स्टूडेंट्स पर. ये नज़ारा उन्हें झारखंड में नहीं मिला और अब वो थक चुके हैं. वो जानते हैं कि झारखंड में बहुत संवेदनशीलता से और राहुल गांधी जी के जो छात्रों के लिए अप्रोच है उसको लेकर के काम हो रहा है.
0: ये बात तो सच नहीं है दीपिका जी. विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, तीनों जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं वो तीनों यहाँ पर फुटेज में भी रजिस्टर्ड है, जो 10 अगस्त को अंधेरा करके, और ये बच्चों ने ही बोला है, ये कोई मीडिया ने नहीं बोला है,
1: बच्चों से
0: उन्होंने बोला है इफ आई मे, कि लाइट ऑफ की गई और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ. महिला पुलिस के बिना मेल पुलिसमैन ने लड़कियों को घसीट करके, एक लड़की ने हमारे कैमरे पे बोला है कि मेरे को पैर में और पीठ में मेल पुलिस वाले ने मारा है, थप्पड़ मारा है, हमें घसीटा है.
1: I would like to see those footages. लेकिन आप छात्रों के कई सारे ऐसे फुटेज आपके पास होंगे जहां उन्होंने कहा है कि भाग दौड़ में उनको गिरने पर चोट आई है, और कोई ऐसा मामला एक्सेप्शनल कुछ हुआ है तो ऑन कैमरा मैं आपसे माफी मांगती हूँ. लेकिन आप समझिए, 8-8 बैरिकेड छात्र जब तक शांतिपूर्वक चल रहे थे, किस कोई भी स्टेट ये अलाउ नहीं करता कि आप 8 बैरिकेड पार करें. आंदोलनों को रोकने का प्रयास होता है. वन मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज. 8 बैरिकेड. विधानसभा घेराव का मतलब ये नहीं होता कि आप विधानसभा के परिसर के अंदर जा कर के अपनी बातों को रखें. एक लॉ एंड ऑर्डर के को मेंटेन करने के हिसाब से आज कोई संसद में घुस जाएगा तो आपको मालूम है ना कि वहाँ गोली, सीधे गोली मारने की, अनऑथराइज कोई घुसता है तो ये करने की बात है.
0: इट्स सो इंटरेस्टिंग यू से दैट, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज बीइंग अटेम्प्टेड ऑन द 20th ऑफ जुलाई, वेयर द प्रोटेस्टर्स हैड रीच्ड विद इन 500 मीटर्स. इट इज ऑन कैमरा, दे वर राइट नेक्स्ट टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉल, एंड व्हिच इज व्हेन द लाठी चार्ज.
1: देन यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन झारखंड एंड जंतर मंतर. वहाँ जब 500 मीटर आप कह रही हैं अगर कि पार्लियामेंट के पास पहुंचे थे तो छात्रों के साथ क्या किया गया?
0: It's on camera,
1: कैसे,
0: it's on camera.
1: कैसे बिना यूनिफॉर्म के लोगों को, गूंज को भीड़ में घुसाया गया था, और यहाँ झारखंड के विधानसभा के गेट तक पहुंचने के बाद भी बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था. लेकिन उन छात्रों के साथ उपद्रवी भी थे. वो आप आंदोलन कर रहे छात्रों से पूछिए, आप जरूर मिली होंगी इस आंदोलन को लीड कर रहे रविंदर पासवान. ऑन कैमरा ही एक्सेप्टेड कि उपद्रवी इस हमारे आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन में घुस गए.
0: दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज एक्सेप्टेड बाय अभिजीत दिपके आल्सो, दैट उन्होंने भी कहा कि हमारे आंदोलन में कुछ उपद्रवी घुस गए हैं. जब जंतर मंतर से थोड़ी दूर पर आरएएफ वालों को पीटा गया ऑन द 22nd, नॉट इवन ऑन द 20th.
1: यू विल पुट ऑल एफर्ट्स टू कंपेयर जंतर मंतर एंड झारखंड विद फोल्डेड हैंड्स. आई विल से प्लीज डोंट डू दिस. यहां जंतर मंतर पे जब आंदोलन हुआ, महीने तक चला, उसके बाद एक इस्तीफा लिया गया. स्टेट यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सीआईडी की जांच पहले शुरू कर दी गई थी, और जब बात आने लगी, खुलने लगी, भाजपा का जो एजुकेशन माफिया है, जो एग्जामिनेशन माफिया है, उस वो घबराहट में उन्होंने छात्रों को आगाह करके आंदोलन किया और वो अब एक्सपोज भी हो गए. अब
0: यहाँ absolutely right. You arrested 19 people over here. 13 people were arrested in Delhi as well.
1: Not just 19 people. Our JPSC chairman has been arrested. पूरा JPSC भंग है. बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम लोग इसका समाधान देना चाहते हैं. झारखंड वॉज वन स्टेट जो 2023 में विधेयक ला करके

0: Before we get Aishwarya, let's just get in breaking news coming in. It's the FCRA bill be referred to a joint committee of the House consisting of 21 members of the House to be nominated by the Honorable Speaker in the Lok Sabha and 10 members of the Rajya Sabha to be nominated by the Honorable Chairman of the Rajya Sabha. That in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be as near as maybe one-third of that total number of members of the joint committee that the committee shall make a report to this basically by the last day of the first week of the winter session. So that is the joint committee to have 31 members in all, the Lok Sabha to nominate 21 members and 10 from the Rajya Sabha. So Rajya Sabha will be nominating 10 of their members. So that will be basically the committee that is going to be filing its report that is due by the winter session. This, let's just listen in to what is being said.
1: Targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this. The government should withdraw this bill. We demand for the withdraw bill.
2: Sri Kiran Riju. Sri Kiran Riju.
3: Kesi Venugopal ji, bilkul galat baat kar rahe.
2: Sri Kiran Riju.
3: वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पर इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं. जेपीसी को पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुलाकर के आप हियरिंग करेंगे. वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे. ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे जब जेपीसी भेजते हैं. जेपीसी में मैटर बेचता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है. ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं. तो अफसोस की बात है, कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है. ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है. किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है.
2: एवरी डे यू आर डिमांडिंग दैट बिल शुड रेफर टू द जेपीसी. It is every day. And again, if government is now agreeing, and if parliamentary affairs minister या अगर नित्यानंद जी अगर वो जेपीसी को भेज रहे हैं तो और थ्रेड बेयर डिस्कशन हो जाएगा. थ्रेड बेयर डिस्कशन होगा. गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही. नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पर और डिटेल डेलीबरेशन और डिस्कशन हो जाए, इसलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं. तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है. एक मिनट अखिलेश को पूछिए. अखिलेश जी आप क्या कहने
4: सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए.
2: तो समय आपको
4: मुझे
2: समय...
4: तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी.
2: नहीं, मैंने समय दिया
4: 3 बजे.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आतुर मसाला।
5: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
6: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
5: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, एनडीटीवी स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th BCS रत्न अवार्ड्स 2025-26। बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल ऑफ द ईयर एनडीटीवी 24/7। बेस्ट न्यूज ऐप ऑफ द ईयर एनडीटीवी। बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayyed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year,

0: Operation Sindoor coverage. NDTV, the network of impact.
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
1: आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: तीन साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

1947 में हमें आजादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने की आजादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आजादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आजादी या इलाज को जरूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंगे होने की या हर चीज को छूने से पहले सैनिटाइजर यूज करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आजादी या उनसे माफी मांगने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आजादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आजादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि आजादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आज़ाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं एक बेहतर कल मिला था। हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आजाद थी। जय हिंद।

0: खास बात।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
3: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
4: Just few inches away is POK.
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
5: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
6: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right and Center.
5: Hard facts.
6: War-struck country.
5: Hard questions.
6: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
8: In France. In Italy.
6: At Srinagar.
8: INS Vikrant.
6: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
10: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन एनडीटीवी स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th बीसीएस रत्न अवार्ड्स 2025-26 बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल ऑफ द ईयर एनडीटीवी 24/7 बेस्ट न्यूज ऐप ऑफ द ईयर एनडीटीवी बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर West Bengal election coverage. Best podcast show of the year, NDTV Control All Defense. Best primetime anchor of the year, Sayed Suhail. Best female anchor of the year, Vasudha Venugopal. Best on-ground coverage of the year, Operation Sindoor coverage. NDTV, the network of impact.
11: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
12: वेट सिर्फ आपके साथ
11: खाइए ना
12: प्लीज।
11: आप कहाँ से हैं?
12: हरियाणा।
11: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
12: डेढ़ महीने पे।
11: आपकी फैमिली है
12: और
11: बच्चे हैं?
12: 3 साल।
11: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
12: बहुत।
11: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
12: श्रीनगर तक अलाउड।
11: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
13: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: से तत्काल मामले को कानमोदित पाठ सभापटल पर प्रस्तुत करें। बिल माने लागी बिल हमने आपके पास भेज दिया। इस सदन ने सर्वसम्मति से उस बिल को सभी माननीय दलों के सदस्यों के लिए, उनके नेताओं के लिए, कि उसमें और थ्रेड एंड बेयर डिस्कशन हो जाए। कायदे से उस बिल को जो एविडेंस बुलाना हो, कंप्रेहेंसिव हो, उनका हो जाए। तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। आखिर अगर एक बिल कोई पारित हो गया, आप रुक जाए। नहीं, देखिए, ये तो आपकी भावनाएं रखी गई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में। औजला साहब, नहीं, व्हाट डू मीन, इफ गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ मूव या रेफर टू एनी बिल टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये आपके लिए स्कोर है, आपके लिए स्कोर है, और आप कह रहे हैं इसके लिए नहीं है। आइटम नंबर 30 खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के लिए, माननीय मंत्री जी,
1: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई रेज टू मूव दैट द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 टू फर्दर amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration.
0: प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ। अब विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक मिनट सुन ले जयप्रकाश जी सुन ले, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इस पर संशोधन मूव किया है और आप लोगों ने अगर इस पर अमेंडमेंट मूव किया है, तो मैं आग्रह करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, दो यू हैव मूव अमेंडमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बिल, काइंडली यू टेक योर सीट, आई विल अलाउ यू। जिन्होंने संशोधन मूव किया है, उनके सभी सदस्य अगर अपने अपने स्थान पे चले जाएं, तो मैं, अन्यथा फिर मैं सभी खंडों को सभा के लिए निर्णय के लिए एक साथ लूंगा। माननीय सदस्य इनके प्रेमचंद्रन जी, माननीय सदस्य इनके प्रेमचंदन जी, क्या कहना चाहते
2: हैं सर? सर आई एम ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर।
0: आर यू मूविंग अरुण नेहरू जी, विशाल पाटिल जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी, श्री आज आर सच्चिदानंदम जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री मनोज कुमार जी, दुरई वाइको जी।

0: इतने माननीय सदस्यों के द्वारा आया है और तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले लूंगा। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बना। अब खंड 1 अधिनियम और सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
1: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ यूर परमिशन आई राइज टू मूव द बिल बी पास्ड।
0: प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्यगण, अगर ये जो बिल आपके समक्ष अभी मतदान हुआ है, अगर इस बिल पे वाकई आपका विरोध था, इस बिल पे अगर आप इस बिल का पे विरोध करना चाहते थे तो विरोध का तरीका आपके पास था, आपने अमेंडमेंट मूव किया था, अमेंडमेंट में पूरा आपका अधिकार था बोलने के लिए। बिल जब माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया तो जब विचार हो रहा है तो ये सदन के बेल में, जो सदन के बेल में खड़े हैं, ये शायद अगर आप अपनी सीट पे होते, इससे साफ है कि आप यू डोंट हैव करें, ये यू आर नॉट गोइंग टू अपोज दिस बिल। अगर इफ यू वांट रियली वी आर इंटरेस्टेड टू अपोज द बिल तो क्यों नहीं आपने पार्टिसिपेट किया? आखिर जब आपका अमेंडमेंट है, माननीय मंत्री प्रस्ताव कर रहे हैं कि इस पर विचार करिए, किसी ने केवल ये शोर करके, आखिर क्या आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? नहीं नहीं जयप्रकाश जी, आप पहले भी एमपी रहे हैं, टैगोर मलकम जी, आप क्या आने वाली पीढ़ियों को आप मैसेज देंगे? यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर चीफ विप ऑफ योर पार्टी। अगर इफ ऑनरेबल मेंबर्स दे हैव मूव अमेंडमेंट और मंत्री जी ने विचार करने के लिए कहा, नहीं श्याम आप यहाँ क्यों खड़े हैं, श्याम यहाँ क्यों खड़े हैं, प्रतिभा यहाँ क्यों खड़ी, डाकोर प्रतिभा डाकोर क्यों खड़ी है? तो ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं मीना जी, तो मुझे लगता है कि आप कोई आप इसमें नहीं अवसर करें तो इससे नहीं, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण बिल है, देश के हित में है, देश की जनता के लिए है, उस पर आप सरकार के द्वारा विचार।
2: All right, so there in the chair you could see Jagdambika Pal beseeching the opposition to allow debate and discussion to take place, saying that the bill is being, you know, placed before parliament. However, as you saw, chaotic scenes there and sloganeering as well, with the opposition chanting slogans of Azadi. Remember, there has been a deadlock in parliament over the opposition's demand that Home Minister Amit Shah come and speak in the House and answer who ordered the violence against children, against students who were protesting at Jantar Mantar. That is where the issue really stands. Just one day left of the monsoon session. Let's go back to the Lok Sabha. Listen in.

0: संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और उस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज अस्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पर तैयार है, आप माननीय गृहमंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं, तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई, सदन में अब कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। आपकी मांग थी कि माननीय गृहमंत्री जी इस चर्चा पे जवाब दें, लगातार सदन कई दिन तक आपने बाधित रखा, तो जब लगातार केवल ओनली यू वेट राइट फ्रॉम 2-3 वीक्स यू वेट डिमांडिंग ओनली कि होम मिनिस्टर शुड रिप्लाई एंड ही शुड पार्टी, नहीं नहीं, अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा तो मैं केसी वेणुगोपाल जी चाहता हूं कि सरकार तैयार है, नहीं आपकी क्या राय, सरकार तैयार है, अगर चर्चा चाहते हो तो उनको कहिए, नहीं गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन एंड होम मिनिस्टर इज नाउ सिटिंग, ही इज रेडी टू रिप्लाई इवन ऑन एवरी पॉइंट। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, क्यों माननीय सांसदी के लिए आपने एक फिर से पूछी संसदीय कार्य मंत्री जी।
1: सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए, हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार है, बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेसिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने अपने कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृहमंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं, हम जब पूरा तैयार करके आए हैं आप फिर भाग रहे, ऐसा तो नहीं होगा, हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए, हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे।
0: अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, बेनी बेनन जी काइंडली यू लिसन मी, रिपीटेडली ट्वाइसली व्हाट प्राइम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तत्काल चर्चा करनी, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो इससे साफ है कि फिर किस लिए सदन बाधित हो रहा था। अगर सदन में अखिलेश जी या केसी वेणुगोपाल जी आप इसकी चर्चा की मांग कर रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप चर्चा हम इसी समय से तैयार हैं चर्चा करने के लिए, तो आखिर इससे साफ है कि हम इस पे तैयार हैं, लेकिन बार बार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप इस पे गृह मंत्री का जवाब नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके द्वारा जो भी सदन में बहुमूल्य बिंदु उठेंगे एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, आप उसको सुनिए, आप भी भाग लीजिए और फिर आप उसको सुनिए, ये फिर तो नहीं होता है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये तरीका थोड़ी है हम माइक बना करके, नहीं आप चर्चा के लिए तैयार है तो सभी माननीय अखिलेश जी, सभी माननीय सदस्यों को अखिलेश जी केसी जी आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग इसको वैकेट करा दीजिए, चर्चा मैं शुरू करा देता हूँ, मैं चर्चा प्रारंभ कराता हूँ, लेकिन आप सदन का बिल आप खाली करिए, मैं तैयार हूँ अखिलेश जी केसी वेणुगोपाल जी सब लोगों को आप मतलब समझे, महासचिव
2: राहत रिपोर्ट थी मैसेजेस राज्यसभा रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वन मेंबर फ्रॉम राज्यसभा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज TOK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind you,
8: and we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground
0: Welcome back. As India gears up to celebrate its 80th Independence Day, Adani Group Chairman Ghani reflected on the turbulent legal chapter the conglomerate has faced in the last 2 years. Days after a U.S. court dismissed the Department of Justice's criminal case against him, Gautam Adani spoke of humility, faith in due process, and the importance of trust built over decades.
2: मैं मात्र 16 वर्ष का था जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा तो मैं सीखना चाहता था काम को समझना चाहता था लोगों को समझना चाहता था आप में से बहुत से साथियों ने भी अपने जीवन में ऐसा ही कोई दिन देखा होगा जब आपने अपने गांव अपने शहर और अपने परिवार को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की तलाश में पहला कदम रखा होगा जीवन का सबसे कठिन कदम अक्सर पहला ही होता है लेकिन वही पहला कदम हमें आकार देने लगता है यह केवल गौतम अदानी की कहानी नहीं है यह हर उस साथी की कहानी है जिसने अपने घर से दूर रहकर देश के किसी कोने में एक प्रोजेक्ट को अपना सपना बनाया यह आप सबकी कहानी है आपके परिश्रम की कहानी है

1947 में हमें आजादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने की आजादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आजादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आजादी या इलाज को जरूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंगे होने की या हर चीज को छूने से पहले सैनिटाइजर यूज करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आजादी या उनसे माफी मांगने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आजादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आजादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि आजादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आज़ाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं एक बेहतर कल मिला था। हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आजाद थी। जय हिंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: वही तो मैं कल बताऊंगा इसका। डैमेज कंट्रोल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग हमने डिस्कशन के लिए अपील करने के बाद, एग्री करने के बाद वो मानते ही नहीं है, तब सेशन खत्म होने वाला है तो होम मिनिस्टर को मजबूर से ये पत्र लिखना पड़ा स्पीकर साहब को हाथ जोड़ के कि ऑपोजिशन पार्टी को मनवाइए, अध्यक्ष जी आपका कहने से ये लोग मान सकते हैं, आप बुला करके मनवाइए और चर्चा कराइए। ये होम मिनिस्टर साहब का भाव को समझिए, कितना वो तैयारी रहे हैं कि चर्चा जल्दी हो, चर्चा नहीं हो पा रहे हैं इसलिए तो ये पत्र लिख रहे हैं। I can't come to another subject, no, when if you can't discuss on the first one. I met them.
1: You said,
2: what did they say after the HN wrote the
0: letter? They are not ready. In the house also I told them.
3: Are you accusing them of running away from a debate?
0: Yes.
3: They have been actually asking for a statement.
0: That is why.
3: You actually offered a debate. Are you saying that they don't want a debate, they are running away? Is that your allegation?
0: Not allegation. They are running away. The whole world is watching it. देखो मैं तो उम्मीद तो मैं छोड़ूंगा नहीं और उम्मीद से ही दुनिया कायम है, मगर कांग्रेस से उम्मीद करना बड़ा कठिन बात हो गया। मैं कितना बात कर चुका हूँ कांग्रेस पार्टी से। अरे मैं वही कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर यहाँ वेट कर रहे हैं, चर्चा शुरू होते ही वहाँ वो बैठेंगे। तो ये तो वही तो है होम मिनिस्टर। आप अरे आप सब, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, मैं तो बैठते रहता हूँ। जिस मंत्री का सवाल होगा, जिस मंत्री का बिजनेस होगा, वही आएंगे ना। हर मंत्री थोड़ी लाइन करके बैठेंगे। अरे तो राज्य मंत्री भी मंत्री है, मंत्री जो होते हैं जिम्मेदारी सबका है।
2: अगर विपक्ष मान जाता है डिस्कशन के लिए तो क्या हाउस की अवधि बढ़ाई जा सकती है?
0: नहीं तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मान जाओ, बढ़ाने का बात तो बहुत छोटी सी बात है। हम तो कह रहे हैं कि कल सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार है। कांग्रेस क्यों डर गए, क्यों भाग गए, वो कांग्रेस से पूछे। मगर मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस इतना कमजोर हो जाएंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था।
4: Here, Kiran Rijiju. Is Fair Minister Kiran Rijiju there expressing his frustration and anguish at Parliament not functioning, talking about how opposition is disrupting Parliament again and again, also really lashing out at the Congress party, saying it's been such a downfall for them, it's an irresponsible opposition is what he called the Congress party. He says the Home Minister is ready to make remarks in Parliament. He's even written a letter to the Speaker of the House saying that he wants to make a remark which addresses these issues about the protests and the subsequent violence that took place on the 20th of July. And he's asked the Speaker to convince the opposition to allow the House to function. Let's go across to Himanshu now for more. And Himanshu, you know, the Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju really frustrated, you know, lashing at the Congress party, saying they're irresponsible, that he's never seen something like this, also talking about how Parliament has just not been able to function and that they're not even listening to the Speaker.
5: Well, clearly, Gagi, it's a very unprecedented political deadlock that we see in Parliament now. And the point that Kiran Rijiju has made is indeed significant, that there is a situation

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind you,
8: and we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: ने उनको जो वायदे किए थे उसमें धोखा दिया।
1: ये वही लोग हैं जो लोग न संसद चलने देते हैं, न ये छात्रों के हितों में खड़े होते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग न संसद चलने देते हैं, न ये छात्रों के हितों में खड़े होते हैं।
2: और जब डिसास्टर के उस दौर से जब हिमाचल प्रदेश गुजर रहा था और गुजरा है और प्रधानमंत्री जी वहां वायदे करके आए, लेकिन जिस प्रकार जो सेंट्रल असिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं मिला, सरकार के पास ऐसी कोई राजस्व के साधन नहीं हो पाते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो पाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो शेष लगाए जा रहे हैं वो कल्याणकारी कल्याण के लिए ही लगाए जा रहे हैं, कोई वेलफेयर मेजर्स के लिए लगाया जा रहा है, किसी अन्य चीजों की विलासिता के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं।
3: सब जगह से हमारा अभी भी सरकार का काम है। मैंने ये कहा कि उस गैप को भरने के लिए फिर भी हमको 100 रुपए इसलिए
4: सस्ता
3: क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक विचार है, एक्चुअली में जब मैंने पंजाब हरियाणा उत्तराखंड के लिए डीजल और पेट्रोल के रेट देखे तो हम पास
4: वो 100 रुपए ज्यादा,
3: आज खुशी इस बात की है। मैंने कहा भी आज भी क्या करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक डीजल का विचार आया 60 से 70 पैसे अपने वो उत्तराखंड से कम है, पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है, चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़ आज उसमें किसी प्रकार का आज भी हमारा जो पैसा आ जाता है पेट्रोल और डीजल सब जगह से हमारा 60 से 70 पैसे कम है। तो उत्तराखंड से कम ने ये कहा कि पंजाब से कम भर लेते हैं, हरियाणा से भी हम कम रखते हैं, चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़
5: All right, after the Jantar Mantar agitation, Gen Z has made protests difficult to ignore, and it's now the next generation that is learning from them. In fact, Gen Alpha is now taking to the streets protesting, and they're demanding their basic rights. Students from Uttarakhand to Uttar Pradesh are taking to the streets demanding that they get their basic infrastructure, better roads, better facilities. Take a look at this report.
6: They may be too young to vote, but they're already learning how to make their voices heard. From Uttar Pradesh to Uttarakhand, school children are stepping out of classrooms and into protests, demanding something basic, better facilities and better living conditions. In Uttar Pradesh's Hamirpur, children joined villagers in nearly a 5-kilometer march to the collectorate, holding the tricolor and demanding a proper road.
7: एक मांग लेके आया हूँ कि मेरे बच्चे और आजादी से जब हुआ तब से मेरे रोड नहीं बना मेरे गांव का। हम 5-6 बार आ चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई।
6: Villagers claim their road has not been built since independence, and during the monsoon, the problem gets worse.
8: हमें इसमें सारे हमारी पूरी यूनिफॉर्म कर दिए जाते हैं, जूता चप्पल सब टूट जाते हैं, फेंक देते हैं पूरे कपड़ा, साइकिल वाइकिल पैर टूट जाते हैं कीचड़ की वजह से।
6: For these children, getting to school isn't just about catching the school bus. It's about getting a road that actually reaches their village. And then in Khatima, Uttarakhand, another group of students decided that staying silent was not an option. Students at a residential school staged a sit-in over complaints of poor food quality, contaminated drinking water and unclean toilets. The issue reached the Pushkar Singh Dhami government, who took cognizance of these complaints. The principal was subsequently ordered to be removed by the Uttarakhand chief minister. Two states, two protests. Different problems, but the same message. Listen to us. Fix what's broken. With the Gen Z making protest culture impossible to ignore, now the Gen Alpha is discovering its own voice. Because for this generation, it is about demanding a world that works. Bureau Report, NDTV.
5: All right, so Gen Alpha, they're learning that it's all right to protest and demand

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। फायर,

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind you,
8: and we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: 1947 में हमें आजादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने की आजादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आजादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आजादी या इलाज को जरूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंगे होने की या हर चीज को छूने से पहले सैनिटाइजर यूज करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आजादी या उनसे माफी मांगने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आजादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आजादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि आजादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता, और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आज़ाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं एक बेहतर कल मिला था। हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आजाद थी। जय हिंद।
1: एंड ऑन दैट थॉटफुल नोट, इट्स अ रैप फ्रॉम मी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू राइट हियर ऑन NDTV।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: with the Congress, SP and DMK opposing the bill, while Congress's KC Venugopal accused the government of aiming the bill at minority institutions doing good work. Akhilesh Yadav asked the government whether they have brought in any legislation that does not target minorities. DMK's TR Balu urged the government to withdraw the bill entirely, then pursue the JPC route. And challenging the opposition, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju intervened and said, "Show me one provision that is anti-minority in the FCRA bill." Further, accusing the opposition of spreading falsehoods. Remember, Union Home Minister Amit Shah also met with the minority groups in a bid to end all kind of rumours regarding the FCRA. We'll take a listen to all the reactions coming in on this.
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
2: The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, ours is getting complete donation from the foreign countries. On one side, ours is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal.
3: वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपने मत रख सकते हैं। जेपीसी को पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे जब जेपीसी भेजते हैं। जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है।
4: सभापति महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। और सभापति महोदय, सभापति महोदय, अगर आप माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप?
3: मैं जिम्मेदार के साथ कहता हूं, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं, इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में।
0: So you heard there's so much of opposition against the FCRA bill. So what, but it has been, of course, been passed to the Joint Parliamentary Committee. Let's now tell you what is the FCRA Amendment Bill. It is regarding the Foreign Contribution Regulation Act. It tightens government oversight. It is managed by the Ministry of Home Affairs. Apart from that, introduced for foreign funded NGOs here in India, it

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तंबी कैसे? टाइगर जैसे।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind me,
8: and we need to rush into a shelter
9: heading there.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे टाइगर?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
3: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
4: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
5: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
6: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: आर प्योर शाही।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
3: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
4: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
5: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
6: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
7: तुम भी कैसे?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
5: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
6: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
7: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
8: तुम भी कैसे?
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
11: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: coming in the house. 20th July, 20th July is the day, the black day in the democracy of India, when the students in the Delhi, in the capital of the country, were shot with pellet guns. 10 students have their marks on their bodies of shot by pellet guns. The female students were molested by the police. Who gave the order to them? Not only this, in the state from where I come, Bihar, AK-47 was used on students. Were they terrorists? Amit Shah, 20 tarikh se kahan gayab hai? Why is Kiran Rajiju ji answering for him? Amit Shah ji ke paas apna muh nahi hai. He comes to the parliament just to eat food in the canteen or what? And then he goes and
1: Amit Shah keh rahe na,
0: jo hamare tax ke paise se aata hai.
1: Are ye sawal aap NDTV pe baith ke poochne ki jagah kal Lok Sabha mein poochiye na Amit Shah se. Aap NDTV pe ye sawal kyun pooch rahe hai? Ye sare sawal jitne ki wo AK-47 kyun chali, ye kyun hua, pellet gun kyun hua? Ask the home minister. Why are you asking on a TV debate?
0: अरे 20 तारीख से तो हम तो लगातार पूछ ही रहे हैं. और यही नहीं, बिहार में तो हम राजभवन मार्च भी कर रहे हैं, तो वहां भी जवाब देना होगा, केंद्र में भी जवाब देना होगा. मोदी जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया ओपोजिशन ने, तब से लेके आज तक कोई जवाब नहीं आया. मुझे बस इतना लगता है कि जितना सवाल हम पूछ रहे हैं, काश जो जैसे आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, एक सवाल अमित शाह जी से पलट के किसी मीडिया कर्मी ने पूछ लिया होता. अमित शाह जी छात्रों पर पेलेट गन्स क्यों चलवाए? AK-47 क्यों चल रही
2: है? अमित शाह जी ने इसका जवाब
0: आतंकवादी थे. अमित शाह जी जवाब देंगे तो हम तो अमित शाह जी से ही जवाब मांगेंगे ना. हम किसी डोरेमोन से जवाब नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो चुने गए प्रतिनिधि हैं. तो
1: ओके,
0: जवाब देना होगा.
1: शाज़िया इल्मी आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन. प्रियंका भारती सेइंग द होम मिनिस्टर टुडे इज मेकिंग दिस ऑफर, बट ही नेवर केम इन टू द लोकसभा. द लास्ट 19 डेज इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट ही वॉज ऑन द पार्लियामेंट प्रेमिसेस, ही वॉज सिटिंग इन हिज ऑफिस इन पार्लियामेंट, बट ही नेवर केम इन द लोकसभा. बट बिफोर यू आंसर दैट, आई वॉन्ट टू क्विकली टेल यू प्रियंका भारती, यू नो दिस एंटायर सेपरेट कैंपेन विच इज बीन कैरिड आउट अगेंस्ट द मीडिया, बहुत सारे सवाल अमित शाह से पूछे हैं मीडिया ने, और पूछे हैं उनके प्रवक्ताओं ने जो कि टीवी पे आते हैं, कि क्या हुआ था दिल्ली में और क्या हुआ था बिहार के अंदर. आई वुड अर्ज यू टू गो बैक एंड चेक व्हाट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, एंड इफ यू वांट आल्सो टू हैव अ डिबेट विद द मीडिया, व्हाई डोंट ऑल दीज पार्टीज हैव अ सेपरेट सेशन लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड इन द लोकसभा विद द मीडिया, एंड लेट्स यू नो स्क्रैच दिस आउट ओवर देयर, बिकॉज दिस इज अ पैरेलल कैंपेन व्हिच इज गोइंग. हाउएवर या Let's do it. Please organize that session. Please organize that session, because ये जो constant बिल्कुल, अरे आप organize कीजिए ना, आपके इतने grievances है, then let's have a parallel session. But right now it is about the government being asked for accountability. Why didn't the home minister come inside the Lok Sabha, Shazia Ilmi? This is all tokenism now. Answer. Why didn't he come into the?
2: You know it's hilarious. And you know, you cannot spend weeks demanding a statement and then run away when the government actually offers one. And there have been statements earlier. Were there not statements from Jitendra Singh? Were there not statements from Kiran Rijiju? Were there not statements from others? There was a whole discussion on this, but they wanted it only from Amit Shah. Now, when Amit Shah agreed, conceded, then they wanted to run away. So this, everybody knows that this is not about seeking answers. This is about creating a tamasha. आप बात कर रही थी ना, सिर्फ हंगामा खड़ा, मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए. तो ये पॉलिटिकल तमाशेबाजी है. यू जस्ट वांट टू कीप द पार्लियामेंट पैरालाइज्ड. इफ यू वांटेड आंसर्स, व्हाई नॉट स्टे, लिसन टू द स्टेटमेंट, डिबेट इट, आस्क नाउ फॉर वन डे, टू डेज, आस्क टू प्रोलॉन्ग द सेशन, आई आस्क फॉर अदर 10 डेज, बट यू कैनॉट डिमांड अकाउंटेबिलिटी. One more thing, last thing, and duck the accountability. You saying is a responsibility of the BJP government, of the treasury benches. What should one do? I mean, physically move Rahul Gandhi from wherever he is and bring him to the parliament. You can't do any more than ask him again and again that we do want a dialogue. We're ready to answer. Come to the parliament. All of us are ready. What else do you expect us to do? What else should treasury benches do? You tell
1: me. Okay. Sanjay Jha, BJP's allegation is you just want to keep the parliament paralyzed, and this is not the only occasion the goalpost has been shifted. Let me give you another example. When the entire CJP protest was taking place at Jantar Mantar, the repeated refrain was Dharmendra Pradhan must resign. When he eventually did resign, here's what happened. Listen in.
3: Students ki mange hain. Pehla Dharmendra Pradhan aur Amit Shah ka resignation. Dusra ki students ko jinhone mara hai. जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है उन पर एक्शन लिया जाए.
4: कंप्लीटली लेजिटिमेट डिमांड, is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties.
5: I want to clearly say that the opposition stance is corrupt education minister has to go. The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan, that's a superficial thing, because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry.
1: Sanjay Jha, and since everyone is quoting Dushyant Kumar, let me quote another poem from him. Wo nigahe salib hai, hum bahut badnaseeb hain, aaiye aankhe moond lein, ye nazare ajeeb hain. अजीब नज़ारे हैं. शुरुआत में आपने कहा कि भाई स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट दो. अब स्टेटमेंट की बात आई है, कह रहे हम नहीं सुनना स्टेटमेंट.
6: वेल पद्मजा, देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स दैट आई थिंक नीड टू बी आर्टिकुलेटेड ऑन योर शो. नंबर वन, आई मीन लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. द होम मिनिस्टर टू होम द दिल्ली पुलिस एंड द आरएएफ एटसेट्रा रिपोर्ट hasn't felt it necessary to suo moto. You don't need Rahul Gandhi or the opposition to tell you to make a state.

0: politically. And most people would not even know their name. That is the irony. Most of India doesn't even know that you've got these JPSC aspirants who are sitting on a fast. Among them is Rupesh Kumar Bagh. He's from Gadwa. You've got Sabita Kumari. She's from Ranchi. Do you know that two of these four students are actually now hospitalized because they were completely dehydrated and they had difficulty breathing? Rahul Kranti was the first one. After 1 week, he had to be hospitalized. He was put in the ICU. Umme Hami was the other one. She was sitting on a fast and now she's also been hospitalized. And the two students who still remain over here, they are being examined by doctors. Let's get a quick update though about their status right now. Aapne inka examination kiya hai. Inki tabiyat kaisi hai?
1: वाइटल जितने भी है पहले से सब नॉर्मल है. कल भी मैंने रूटीन चेकअप किया था तो सब नॉर्मल आ रहे हैं.
0: मतलब डिहाइड्रेशन तो नहीं है इतने दिनों तक? कितने दिनों तक कोई ऐसे अनशन पे रह सकता?
1: अभी तो रह सकते हैं, अभी तो वाइटल सब नॉर्मल आ रहे हैं. अब डिपेंड करता है बॉडी का इम्यूनिटी पे कि कितना दिन रह सकते
0: हैं. एंड माइंड यू ऑल ऑफ दिस इन द मीन टाइम द लाठी चार्ज हैड हैपेंड. यू नो डिस्पाइट दैट दी स्टूडेंट्स केम late at night on Wednesday, the lights of this place were switched off. There was apprehension that perhaps the police is going to empty out this place, and that makes the situation even more difficult for those who are sitting on fast, because if there was to be a lathi charge, they have nowhere to go. And despite that, they feel that if they are going to desert this place, if they move to hospital, then it will be that much easier for those in power to empty out this entire stadium. Rupesh, tabiyat kaisi hai?
2: ठीक है, थोड़ा सा विकृत लग रहा था.
0: कितने दिनों तक रहेंगे? 9 दिन हो चुके हैं और अभी कोई ब्रेक थ्रू का पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रहा है, तो आगे का प्लान क्या है?
2: सरकार हम लोग जब तक बातें नहीं मानती हैं तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे. हम लोग संतन को इस भूख हड़ताल को तभी तोड़ेंगे जब हम लोग सरकार सारी बात मांग पत्र जो दिया गया है वो सारी बातें मान लेंगे, तो हम लोग अपना भूख हड़ताल तोड़ देंगे. बट सरकार का तभी तक ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया जो हम लोग को लगा कहाँ सरकार अभी तक हम लोग सारी बातें मान लिया. कुछ कुछ बातें सर कुछ कुछ बातें सरकार के द्वारा सहमति बनी गई है, बट वो कुछ कुछ बातें ऐसे भी जैसे कि बैकलॉग 23 और 14 JPSC को रद्द किया गया है. बट सिर्फ मैम तो ये ऑलरेडी रद्द हो जाता क्योंकि ये पहले से पेपर लेट के मुद्दा उठ चुका था. और वो ऐसे भी जब वो मार्कशीट सारे डिजिटल मीडिया पर और सारे चैनलों पर प्रसारित हो रहा था तो ऐसे भी उसको कैंसिल होना ही था. हम लोग आवाज़ उठाते हैं नहीं उठा तब भी वो क्या बोलते हैं तो कैंसिल होना ही था. बट सरकार के द्वारा ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि मैंने 3 पेपर कैंसिल किया है तो हो सकता है छात्र अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब तक हम लोग का सारी मांगे नहीं पूरी हो जाती टी डी पी सारे एग्जाम है और अभय जो तिवारी है उसका वो जो जन एग्जाम में संलिप्त उसका पाया गया वो सारे एग्जाम तब तक कैंसिल नहीं होगी. और CBI जाँच का जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कंसर्न जारी रहेगा.
0: ये बताइए रुपेश, अब 9 दिन हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको थका करके कभी तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा ना? कब तक भूखे प्यासे रहो? सरकार थका देगी तो कब तक बैठो?
2: सर हम मैम हम थकेंगे और मेरी वजह युवा साथी हैं और लोग बैठेंगे जी. आज सरकार को ऐसा लगता हुआ कि जो अंतर में बैठे हुए हैं वो सकता थक जाएंगे हॉस्पिटल चल जाएंगे तो अंतर टूट जाएगा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा. बिल्कुल नहीं, ये उनका भ्रम है. ये आज मैं हॉस्पिटल जाऊँगा या 4 साथी कल सो जाएंगे क्योंकि ये सारे लोग पीड़ित हैं, सारे लोग शोषित हैं.
0: बाहर का जो दुनिया है वो तो सिर्फ सोच रही है कि देवेंद्र नाथ मैं तो वहाँ बैठे हुए हैं और उनको तो अस्पताल शिफ्ट कर दिया, तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि आप अभी भी अनशन पर.
2: जी बिल्कुल, किसी एक चेहरा को लाइमलाइट बनाना सही नहीं है क्योंकि यहाँ जितने भी छात्र हैं थोड़ा वो पोलिटिकल पार्टी से हो गया था इसलिए उनका ज़्यादा थोड़ा चेहरा चमकता है. बट हम लोग जिन्हें छात्र हैं यहाँ पर, हम लोग 4 लोग थे और 2 भाई बहन मेरे अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 2 यहाँ पर अभी हैं. बट अगर कल डीसी सर आए हुए थे, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि आप अनशन तोड़ दो, आप खाना खा लो. बट उनसे मैं साफ साफ बोला कि सर आप जब तक मेरी मांग नहीं पूरी तब तक नहीं खाएंगे. तुरंत बाद मैं मेडिकल टीम को बुलाऊंगा और आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर दूंगा. तो बोले सर ये आपकी भ्रम है, अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो हो सकता है यहाँ पर ये जो मंच खाली है ये मंच भर जाएगा अनशन पे भूख हड़ताल पे.
0: Let me just explain to our viewers. What had happened was that initially there was only one stage that was put up on that side of this stadium. And when you had the JLKM, which is a political party in Jharkhand, they came onto that stage with Devendranath Mehto. These students who are politically unaffiliated decided to shift away. So these are actual students who are sitting here on a fast unto death. And the country needs to know their name. They need to know the name of Rupesh. They need to know the name of Sabita. if she is continuing to stay here and came here despite her family not even knowing. आप सभी के साथ
3: बिल्कुल मैं शुरू दिन से हूँ. मतलब जब हम लोग को पता भी नहीं था कि यहाँ 40 स्टूडेंट का भीड़ लगेगा कि 50 स्टूडेंट का भीड़ लगेगा, तब से मैं हूँ.
0: सविता ये बताइए कि डर नहीं लगा आप जब रात को लाइट ऑफ कर दी, यहाँ पे प्रशासन के लोग आ गए, कब तक यहाँ पे बैठी रहोगी? डर तो नहीं लगता कि क्या पता अगर सरकार ने खाली करा दिया?
4: नहीं, हम लोग डर किस बात का, हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? हमारा संविधान में भी तो लिखा हुआ है कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना कहीं भी बैठ के दे सकते हैं. चाहे प्रशासन डराए चाहे कोई भी डराए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं. हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, हमारी मांगे जायज है. आप ही किस एडिट टीम ने इतना सारा खुलासा करके दिखा रहा है कि यहाँ चीटिंग हुआ, यहाँ इतना पैसों का लेन देन हुआ, तो हम लोग क्यों डरे? डरना तो आपको चाहिए, प्रशासन को डरना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग जो है जायज है. हम क्यों डरेंगे? हमारी तो शांतिपूर्ण धरना दे रहा है हम लोग.
0: एक बार लाठीचार्ज हो चुका है 10 तारीख को,
4: तो ये मैम सरकार का डर दिखा रहा है स्टूडेंटों के प्रति. हमारा डर नहीं है. हम लोग को तो लाठी वही समय मार दिया जाता था जब पेपर लीक कर दिया जाता, पेपर को खुलेआम बेच दिया जाता, पेपर रटवाया जाता, उस समय हम लोग को लाठी मारता था. ये लाठी से हम लोग को डर नहीं लगता. ये अभी 2 लाठी मार दीजिएगा तो हम लोग का हिम्मत टूट जाएगा. हिम्मत कभी नहीं टूटेगा. हमारी मांग है जायज, आप हमारी मांग पूरा कीजिए. हम लोग अभी अनशन तोड़ने के लिए तैयार है.
0: बार बार प्रशासन आ रहा है, रात को भी आए थे जब यहाँ लाइट ऑफ की गई थी, उन्होंने कहा था आपका मांग ही लिया, मान लिया है सब कुछ, हट जाओ यहाँ से, अस्पताल चले जाओ.
4: तो हमारा मांग तो मुख्य मांग सीबीआई जांच के लिए, तो आप क्यों नहीं मांग रहे? आप इतना ही ऑनेस्ट है तो आप हमारे मांगों को पूरा कर दीजिए. डर तो आपको चाहिए, डरना तो आपको चाहिए, हमको डरना नहीं है. हम क्यों डरेंगे?
3: मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? वो जिस आवास में रहते हैं वो अपने आसपास सिक्योरिटी रखते हैं, सीसीटीवी कैमरा, बहुत सारे गार्ड्स. तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा झारखंड है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आप TDPL जैसे कंपनी को पर छोड़ दिए कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए. जो अदर स्टेट में जिसको अमान्य माना गया है उसको, उसके ऊपर आप अपने झारखंड के स्टूडेंट्स का भविष्य सौंप दिए, तो ये सोचने वाली बात है. ये जो बोलते हैं कि हम लोग को नहीं पता है, उल्लू मत बनाइए स्टूडेंट्स को. आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जिस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं, उसी तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स मैम जो होते हैं वो 3 पीढ़ी को एक साथ लेकर के चलते हैं. एक तो माता पिता वाली पीढ़ी, एक खुद की पीढ़ी, और जो आने वाला जनरेशन होता है वो पीढ़ी. आप सोचिए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स लेकर के चलते हैं और उनके साथ आप इतना अन्याय कर रहे हैं. आपको शर्म नहीं आती, समझ नहीं आती?
0: दीज आर नेम्स एट द एंड ऑफ द डे दैट पीपल अक्रॉस इंडिया मस्ट रिमेंबर. उम्मे हामी, सबिता कुमारी, रूपेश एंड राहुल क्रांति. रिमेंबर, आउटसाइड ऑफ एनी पॉलिटिक्स, दीज आर एक्चुअल स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हु हैव सैट हियर फॉर ओवर अ वीक विदाउट एनी फूड और वाटर, सो दैट द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस झारखंड शुड बी हर्ड. विद वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी एंड प्रवीण यादव इन रांची, पद्मजा जोशी फॉर NDTV.

0: मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
1: कुछ इससे भी अनोखा
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन,
3: हाउ
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ, यूज भीम ऐप टू पे,
3: इट्स द माही वे।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: वेट सेट आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर
5: मसाला। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर, जेके टायर।

बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sahag, and Sanjay Howard.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाई है।
1: बताइए आप क्या सोचते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे हैं बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं, हम भी चुप बैठे हैं, ये चाहते हैं हम।
2: डिमांडिंग फ्रॉम July 20th ओनली वन डिमांड इज दैट द अटैक ऑन स्टूडेंट्स इन जंतर मंतर दैट शुड बी आंसरेबल। We wanted Amit Shah to come and apologize and Mr. Modi to apologize before, for about the children, to the children whom the Delhi police has beaten up using gundas into as police uniforms. They beaten up the kids, girl children. And third very important demand we are making is Chadda Chori. Ram, in the name of Ram, they had from two seats they had come to this level. And Prime Minister Mr. Modi has gone to the inauguration of Ram Mandir. There Chori has taken place. Theft has taken place in the temple where Mr. Modi is having the control of the Ram Mandir, Ram temple. He should be first answerable that discussion needed in parliament. Why they are running away from parliament? I am unable to understand.
3: Amit Shah ki statement ke Amit Shah ko to istifa dena padega. Statement ki baat chhod dijiye. Bhavishya mein ye naubat aane wali hai ki Amit Shah ko istifa dena padne wala. Aap dekhiye. क्या होता है, इतना आसान नहीं है।
4: नहीं तो यही चीज जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो उनको बोलिए हाउस में आके बोल दे, वो हाउस आ ही नहीं रहे।
5: तो आप भाई क्या लग रहा है
4: भाई, पार्लियामेंट वो तो वही बता सकता है, जो नहीं आ रहा है वही बता पाएगा। मैं तो आ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ पा रहे उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये जो इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजोरिटी रहने के बाद जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो और आप अंदर से घबराए हुए हो। और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है और उसका जवाब आपके पास नहीं है।
6: मंत्री जी शुरू से यहाँ पे जवाब देने को तैयार है, पर उनकी एक ही शर्त है कि आप धैर्य से पूरी चर्चा सुनोगे और धैर्य से संसद चलने चलोगे। ये चलाना नहीं चाहते क्योंकि इनका असली मुद्दा है FCRA बिल। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए, जॉर्ज सोरोस से पैसे लिए, यहाँ तक कि जो देशद्रोही है जाकिर नायक उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया। तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं?
7: Well, we're counting down to the last day of the monsoon session, 2026, but amid massive ruckus, the Lok Sabha passed a motion this afternoon to send the FCRA bill to a joint parliamentary committee for consideration. The JPC is now expected to present a report on the bill by first week of the winter session. MOS Home Affairs Nityanand Rai introduced the motion in the House, with the Congress, SP and DMK opposing the bill, while Congress's KC Venugopal accused the government of aiming the bill at minority institutions doing good work. Akhilesh Yadav asked the government whether they have brought in any legislation that does not target minorities. DMK's T.R. Balu urged the government to withdraw the bill entirely, then pursue the JPC route. Challenging the opposition, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju intervened and said, "Show me one provision that is anti-minority in the FCRA bill." And this, of course, comes at a time when Union Home Minister Amit Shah also met various Christian minorities to bust all kind of myths regarding the FCRA bill. Further, Rijiju accused the opposition of spreading falsehoods.
8: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गण पूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी, कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
9: द बिल इज सर्कुलेटेड फॉर मूविंग ए रेसोल्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन FCRA इन द नेम ऑफ ऑनरेबल अमित शाह जी। सर, दिस लेजिस्लेशन इज क्लियरली फॉर टारगेटिंग NGOs एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दोस वो आर डूइंग गुड वर्क। वन साइड RSS getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal.
10: कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि JPCC में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा, कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पर इसका विरोध है तो JPCC में आप अपना मत रख सकते हैं। JPCC को पर्याप्त समय मिलेगा, बुलाकर आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब JPCC भेजते हैं, JPCC में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है।
11: सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप?
10: मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं, इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है।
7: In other news, the health officials in Bengaluru have raided several eateries and cloud kitchens as a part of their food safety drive. According to the details accessed by NDTV, after raids on five-star hotels, premium restaurants, Zepto and Zomato's hyper-pure facility, health officials have now inspected Indira canteens across Bengaluru, checking hygiene, food quality, storage and safety compliance as well. Karnataka Health Minister U.T. Kadir says that food safety inspections have exposed shocking lapses, from fungus in food to poor quality oil at premium restaurants, as the government moves to strengthen vigilance in the state.
12: What was the thought behind conducting such raids? Because earlier you said, I'm going to go after big establishments so that even the small establishments fall in place. Firstly, tell us, what's the thought process behind these searches?
13: See, as a minister, as health minister, as I come to various in the meetings and reviews, a lot of diseases, and today all communicable diseases have become like non-communicable diseases are like communicable diseases now. Like if you go see cancer, kidney, and other diseases, they're like COVID in every house, every place, and us.
12: Okay.
13: So if you don't put a full stop somewhere, after 5 to 10 years, this will be out of control. So ultimately, when we discuss, we come to know food diabetes is the main problem for all these diseases. God doesn't send any disease to us automatically. That's only 5%. Then the lifestyle, food diabetes, and lifestyle environment. So food diabetes, you should see how to control this first.
12: Okay.
13: So after some time, at least it will be all right. So we thought, we should see from top level only.
12: Okay.
13: So we took the top good hotels, which are there. Which is named as good hotels.
12: Yeah.
13: Second thing, all this international burgers company.
12: Yeah.
13: Because from where this bun comes,
12: yeah,
13: which can be stored for 1 or 2 months, and then it can be heated and given.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आपने ना?
2: बहुत।
1: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: fuel prices up by 60 paisa per litre from midnight. The government says that the cess will fund welfare measures for widows and orphans and will be collected at the point of first sale under the state VAT law. But the move has triggered a political fight. Congress MP Sukhdeo Bhagat says that Himachal has limited revenue sources after the disaster and that these taxes are meant for welfare, not luxury. The BJP, however, is hitting back. MP Yogendra Chandolia says that people are now being troubled after the election, while Manoj Tiwari has rather accused the government of failing to stand up for students and disrupting the parliament as well.
1: हिमाचल प्रदेश की सरकार तो इस प्रकार की सरकार है जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए. वह हाहाकार है, लोग परेशान है हिमाचल की सरकार को चुनकर कि राहुल गांधी ने उनको जो वायदे किए थे उसमें धोखा दिया है.
2: वही लोग हैं जो लोग न संसद चलने देते हैं, न ये छात्रों के हितों में खड़े होते हैं. ये वही लोग हैं जो लोग न संसद चलने देते हैं, न ये छात्रों के हितों में खड़े होते हैं.
3: वो जब डिसास्टर के दौर से जब हिमाचल प्रदेश गुजर रहा था और गुजरा है और प्रधानमंत्री जी वहां वायदे करके आए, लेकिन जिस प्रकार जो सेंट्रल असिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं मिला. सरकार के पास ऐसी कोई राजस्व के साधन नहीं हो पाते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो पाता है. लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो शेष लगाए जा रहे हैं वो कल्याणकारी कल्याण के लिए ही लगाए जा रहे हैं, कोई वेलफेयर मेजर्स के लगाए जा रहा है, किसी अन्य चीजों की विलासिता के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं.
0: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back, lots more lined up.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening? How?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: Minister Mr. Modi has gone to the inauguration of Ram Mandir. There, chori has taken place. Theft has taken place in the temple where Mr. Modi is having the control of the Ram Mandir, Ram temple. He should be first answerable that discussion needed in parliament. Why they are running away from parliament? I am unable to understand.
1: अमित शाह की स्टेटमेंट के अमित शाह को तो इस्तीफा देना पड़ेगा. स्टेटमेंट की बात छोड़ दीजिए, भविष्य में ये नौबत आने वाली है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ने वाला. आप देखिए क्या होता है, इतना आसान नहीं है.
2: नहीं तो यही चीज जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो उनको बोलिए हाउस में आके बोल दे, वो हाउस आ ही नहीं रहे.
3: तो आप भाई क्या लग रहा है
2: भाई, पार्लियामेंट वो तो वही बता सकता है, जो नहीं आ रहा है वही बता पाएगा. मैं तो आ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ पा रहे उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा. लेकिन ये जो इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजोरिटी रहने के बाद जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो और आप अंदर से घबराए हुए हो. और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है और उसका जवाब आपके पास नहीं है.
4: वे मंत्री जी शुरू से यहाँ पे जवाब देने को तैयार है, पर उनकी एक ही शर्त है कि आप धैर्य से पूरी चर्चा सुनोगे और धैर्य से संसद चलने से रहोगे. ये चलाना नहीं चाहते क्योंकि इनका असली मुद्दा है FCRA बिल. राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए, जॉर्ज सोरोस से पैसे लिए, यहाँ तक कि जो देशद्रोही है जाकिर नायक उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया. तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं.
5: Well, we're counting down to the last day of the monsoon session, pardon me, 2026, but amid massive ruckus, the Lok Sabha passed a motion this afternoon to send the FCRA bill to a joint parliamentary committee for consideration. The JPC is now expected to present a report on the bill by first week of the winter session. MOS Home Affairs Nityanand Rai introduced the motion in the House, with the Congress, SP and DMK opposing the bill, while Congress's KC Venugopal accused the government of aiming the bill at minority institutions doing good work. Akhilesh Yadav asked the government whether they have brought in any legislation that does not target minorities. DMK's T.R. Balu urged the government to withdraw the bill entirely, then pursue the JPC route. Challenging the opposition, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju intervened and said, show me one provision that is anti-minority in the FCRA bill. And this, of course, comes at a time when Union Home Minister Amit Shah also met various Christian minorities to bust all kind of myths regarding the FCRA bill. Further, Rijiju accused the opposition of spreading falsehoods.
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे.
7: The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah Ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side RSS getting complete donation from the foreign countries on one side, RSS

0: against these hoteliers. We appreciate them and we respect them because they have invested and started their one type of business, which is a servicing for the people.
1: Okay.
0: But they shouldn't cheat the people, no?
2: In other news, Himachal Pradesh has introduced a new orphan and widow cess on petrol and high-speed diesel, pushing fuel prices up by 60 paisa per litre from midnight. The government says that the cess will fund welfare measures for widows and orphans and will be collected at the point of first sale under the state VAT law. But the move has triggered a political fight. Congress MP Sukhdeo Bhagat says that Himachal has limited revenue sources after the disaster and that these taxes are meant for welfare, not luxury. The BJP, however, is hitting back. MP Yogendra Chandolia says that people are now being troubled after the election, while Manoj Tiwari has rather accused the government of failing to stand up for students and disrupting the parliament as well.
3: हिमाचल प्रदेश की सरकार तो इस प्रकार की सरकार है जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए. वह हाहाकार है, लोग परेशान है हिमाचल की सरकार को चुनकर कि राहुल गांधी ने उनको जो वायदे किए थे उसमें धोखा दिया.
4: वही लोग हैं जो लोग न संसद चलने देते हैं, न ये छात्रों के हितों में खड़े होते हैं. ये वही लोग हैं जो लोग न संसद चलने देते हैं, न ये छात्रों के हितों में खड़े होते हैं.
5: वो जब डिसास्टर के दौर से जब हिमाचल प्रदेश गुजर रहा था और गुजरा है और प्रधानमंत्री जी वहां वायदे करके आए, लेकिन जिस प्रकार जो सेंट्रल असिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं मिला. सरकार के पास ऐसी कोई राजस्व के साधन नहीं हो पाते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो पाता है. लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो शेष लगाए जा रहे हैं वो कल्याणकारी कल्याण के लिए ही लगाए जा रहे हैं, कोई वेलफेयर मेजर्स के लगाए जा रहे हैं, किसी अन्य चीजों की विलासिता के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं.
2: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back, lots more lined up.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: गायब कहाँ थे? इट वॉज नॉट सो ना दैट ही वॉज नॉट कमिंग टू द पार्लियामेंट. ही वॉज कमिंग टू द पार्लियामेंट बट ही वॉज नॉट कमिंग इन द हाउस. 20th July, 20th July is the day, the black day in the democracy of India, when the students in the Delhi, in like the capital of the country, were shot with pellet guns. 10 students. 10 students have their marks on their bodies of shot by pellet guns. The female students were molested by the police. Who gave the order to them? Not only this, in the state from where I come, Bihar, AK-47 was used on students. Were they terrorists? अमित शाह 20 तारीख से कहाँ गायब है? Why is Kiran Rijiju ji answering for him? अमित शाह जी के पास अपना मुंह नहीं है. He comes to the parliament just to eat food in the canteen or what? And then he goes and
1: अमित शाह कह रहे हैं ना,
0: जो हमारे टैक्स के पैसे से आता है.
1: अरे ये सवाल आप NDTV पे बैठ के पूछने की जगह कल लोकसभा में पूछिए ना अमित शाह से. आप NDTV पे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये सारे सवाल जितने की वो AK-47 क्यों चली, ये क्यों हुआ, पैलेट गन क्यों हुआ, आस्क द होम मिनिस्टर. व्हाई आर यू आस्किंग ऑन अ टीवी डिबेट?
0: अरे वो 20 तारीख से तो हम तो लगातार पूछ ही रहे हैं. और यही नहीं, बिहार में तो हम राजभवन मार्च भी कर रहे हैं, तो वहां भी जवाब देना होगा, केंद्र में भी जवाब देना होगा. मोदी जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया ओपोजिशन ने, तब से लेके आज तक कोई जवाब नहीं आया. मुझे बस इतना लगता है कि जितना सवाल हम पूछ रहे हैं, काश जो जैसे आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, एक सवाल अमित शाह जी से पलट के किसी मीडिया कर्मी ने पूछ लिया होता. अमित शाह जी छात्रों पर पेलेट गन्स क्यों चलवाए? AK-47 क्यों चल रहा है?
2: अमित शाह जी ने उसका जवाब दे दिया,
0: आतंकवादी थे. अमित शाह जी जवाब देंगे तो हम तो अमित शाह जी से ही जवाब मांगेंगे ना, हम किसी डोरेमोन से जवाब नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो चुने गए प्रतिनिधि हैं. तो
1: ओके,
0: देना होगा.
1: शाज़िया एल्मी, आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन. प्रियंका भारती इज सेइंग द होम मिनिस्टर टुडे इज मेकिंग दिस ऑफर बट ही नेवर केम इनटू द लोकसभा. द लास्ट 19 डेज इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट ही वाज ऑन द पार्लियामेंट प्रेमिसेस, ही वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस इन पार्लियामेंट बट ही नेवर केम इन द लोकसभा. बट बिफोर यू आंसर दैट, आई वांट टू क्विकली टेल यू प्रियंका भारती, यू नो दिस एंटायर सेपरेट कैंपेन विच इज बीइंग कैरिड आउट अगेंस्ट द मीडिया, बहुत सारे सवाल अमित शाह से पूछे हैं मीडिया ने और पूछे हैं उनके प्रवक्ताओं ने जो कि टीवी पे आते हैं, कि क्या हुआ था दिल्ली में और क्या हुआ था बिहार के अंदर. आई वुड अर्ज यू टू गो बैक एंड चेक व्हाट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. एंड इफ यू वांट आल्सो टू हैव अ डिबेट विद द मीडिया, व्हाई डोंट ऑल दीज पार्टीज हैव अ सेपरेट सेशन लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड इन द लोकसभा विद द मीडिया, एंड लेट्स यू नो स्क्रैच दिस आउट ओवर देयर, बिकॉज़ दिस इज अ पैरेलल कैंपेन व्हिच इज गोइंग. हाउएवर या लेट्स डू इट. Please organize that session. Please organize that session. Because ये जो constant. बिल्कुल. अरे आप organize कीजिए ना, आपके इतने grievances हैं. Then let's have a parallel session. But right now it is about the government being asked for accountability. Why didn't the Home Minister come inside the Lok Sabha, Shazia Elmi? This is all tokenism now. Answer. Why didn't he come into the?
2: You know, it's hilarious. And you know, you cannot spend weeks demanding a statement and then run away when the government actually offers one. And there have been statements earlier. Were there not statements from Jitendra Singh? Were there not statements from Kiran Rijiju? Were there not statements from others? There was a whole discussion on this, but they wanted it only from Amit Shah. Now, when Amit Shah agreed, conceded, then they wanted to run away. So this, everybody knows that this is not about seeking answers. This is about creating a tamasha. आप बात कर रही थे ना, से हंगामा खड़ा, मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए. तो ये पॉलिटिकल तमाशेबाजी है. यू जस्ट वांट टू कीप द पार्लियामेंट पैरालाइज्ड. इफ यू वांटेड आंसर्स, व्हाई नॉट स्टे, लिसन टू द स्टेटमेंट, डिबेट इट, आस्क नाउ फॉर वन डे, टू डेज, आस्क टू प्रोलॉन्ग द सेशन, आई आस्क फॉर अदर 10 डेज, बट यू कैनॉट डिमांड अकाउंटेबिलिटी. Duck the, no, one more thing, last thing, and duck the accountability. You saying is a responsibility of the BJP government, of the treasury benches. What should one do? I mean, physically move Rahul Gandhi from wherever he is and bring him to the parliament. You can't do any more than ask him again and again that we do want a dialogue. We're ready to answer. Come to the parliament. All of us are ready. What else you expect us to do? What else should treasury benches do? You tell
1: me. Okay. Sanjay Jha, BJP's allegation is you just want to keep the parliament paralyzed, and this is not the only occasion where the goalpost has been shifted. Let me give you another example. When the entire CJP protest was taking place at Jantar Mantar, the repeated refrain was that Dharmendra Pradhan must resign. But when he eventually did resign, here's what happened. Listen in.
3: Students ki mange hain. Pehla Dharmendra Pradhan aur Amit Shah ka resignation. Dusra ki students ko jinhone mara hai.

0: No, I think Rahul Gandhi actually embraced and took the bull by the horns. And you read his statements on Jharkhand. They're a junior alliance partner in Jharkhand, but he's been extremely explicit in saying that he condemns and cautions any attempt to try and have any violent attack on the protesting students. So I think there is no ambiguity where he's concerned.
1: Sir,
0: Can
1: the
0: I tell you,
1: lathi
0: can
1: charge
0: I tell
1: happened
0: you?
1: an hour 15 minutes after his tweet. This is like, this
0: But
1: is
0: let me
1: like, you
0: tell
1: know,
0: you
1: this is like
0: something. The
1: Donald Trump
0: elephant in the
1: saying, I
0: room,
1: condemn
0: Padmaja,
1: the
0: that we are not
1: blockade of,
0: discussing.
1: you know.
0: You know, let me give you the
1: This is like
0: example. The
1: Donald Trump
0: elephant.
1: saying, I condemn the bombing of Beirut, but you are doing it at the same time. It doesn't matter what you condemn while you are doing it.
0: Well, Padmaja, let me tell you, frankly, this debate would have been absolutely meaningless if we had the Prime Minister of India hold a press conference and express the position of the government. But Mr. Modi will never do it. And that, to me, is the elephant in the room that we should not be casual about. This is a time when the
1: You're
0: leader
1: changing the
0: speaks
1: topic.
0: up. The buck stops at the top. That's your program title, Padmaja. And it should always be like that in a democracy.
1: Okay, so now we have. Okay, so now the buck has stopped at the Prime Minister's press conference. Now,
0: Should
1: even
0: be,
1: Amit Shah will not
0: ideally.
1: suffice because all this while we were looking at Amit Shah for answers. But now, the Prime Minister, Tushar Gupta, the ultimate solution offered by Sanjay Jha.
0: Absolutely. That's
2: You
0: the
2: know,
0: way you read it every democracy.
2: the excessive drama from the opposition has now created an appetite amongst the people to actually hear from the Home Minister what really transpired on July 20th. And the problem is because the opposition lost the opportunity willingly to counter him in the parliament, he can choose the medium. It could be the Lok Sabha, the Rajya Sabha, the press briefing, wherever he wants to. But the people will be interested to hear because Rahul Gandhi isn't. Interestingly, it was Rahul Gandhi who said that I want to hear from the Home Minister what happened. Now it's Rahul Gandhi who doesn't want to listen for reasons best known to him. And Priyanka Bharati here was going a lot about Amit Shah and his invincibility and कायर है ये है वो है. 2 महीने पहले झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुआ था. आरजेडी के एमएलए वर वोटिंग फॉर द एनडीए कैंडिडेट. सो मिस भारती हियर शुड बी लिटिल मोर हम्बल दैट हर ओन
1: कहां
2: पार्टी
1: से
2: कैन
1: हासिल
2: नॉट कीप अ
1: हुई
2: टैब ऑन हर ओन एमएलएज इन झारखंड.
1: दुर्गा
2: सो
1: जी,
2: शी
1: ये
2: शुड
1: गुप्त
2: नॉट कमेंट ऑन
1: जानकारी
2: व्हाट्स
1: आपको
2: गोइंग ऑन विद
1: कहां से
2: अमित शाह इन
1: हासिल हुई
2: दिल्ली.
1: थी?
2: थोड़ा
1: नहीं
2: रियलिस्टिक होना चाहिए.
1: नहीं तुषार जी, गुप्त नाउ
0: थोड़ा
1: यू
0: ये गुप्त जानकारी अपनी
1: नाउ यू
0: कहां
1: जस्ट
0: से
1: बेटिंग
0: हासिल
1: प्रियंका
0: हुई,
1: भारती,
0: जानकारी देश
1: ये
0: को दीजिए,
1: दुखती रग पे आप जानबूझ के हाथ रख रहे
0: जानकारी
1: हैं।
0: देंगे। नहीं, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि गुप्ता जी ये जानकारी लाए कहां से, हमारी समझ से परे है। और दूसरी बात, जो संजय झा जी ने जो
2: तभी तभी
0: आर्ग्यूमेंट किया
2: ऐसा
0: है
2: हाल है
1: आपको,
2: पार्टी का.
1: दुनिया
2: आपको पता है
1: प्रधानमंत्री
2: ये
1: जी
2: सारी
1: प्रेस
2: दुनिया को
1: कॉन्फ्रेंस
2: पता
1: नहीं
2: है
1: करते
2: जानकारी
1: हैं, सब इस पे हंस दिए, लेकिन
2: कैसे होती है.
1: लिटरली क्वेश्चन तो ये क्यों नहीं करते हैं, किससे घबराते हैं, कैसे डरते हैं? सवाल तो वैसे भी उनके पास नहीं आने, सवाल तो यही आएंगे, आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, ये प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी वो तुषार,
0: घबराते हैं। खैर, मैं तो बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि ये शो
2: प्रियंका
1: छात्रों के
2: भारती
1: बारे
2: जी
1: में है।
2: को
1: तुषार
2: क्या है ना,
1: गुप्ता
2: आधे
1: जी,
2: घंटे में भूल जाती है वो बात क्या कह
1: तुषार
2: रही है.
1: जी,
2: पहले
1: तुषार जी,
2: 15 मिनट में कहती है प्रेस
1: तुषार
2: तो
1: जी, अरे
2: प्रधानमंत्री से कोई मुश्किल सवाल
1: गुप्ता
2: नहीं
1: जी,
2: पूछती, फिर
1: तुषार
2: आखिरी
1: गुप्ता
2: 15 मिनट
1: जी,
2: में कहती है प्रधानमंत्री तो प्रेस के
1: तुषार गुप्ता
2: मुश्किल
1: जी,
2: सवालों से घबराते हैं.
1: आपको
2: ये जो
1: आपसे
2: एक
1: बस एक ही
2: कॉन्ट्रडिक्टरी
1: बात
2: टोन है इनकी,
1: कहूंगी,
2: इनको खुद ही नहीं
1: एक
2: पता
1: ही
2: ये क्या
1: बात
2: बात कर रही है.
1: कहूंगी,
2: बट पद्मजा, द बक एक्चुअली इज हु इज गोइंग टू फर्स्ट टेल द पब्लिक
1: पद्मजा जी,
2: थ्रू
1: हु
2: वट
1: इंटेंड
2: एवर
1: टू गिव
2: मीडियम
1: द
2: वॉट रियली
1: रिस्पॉन्स टू
2: हैपेंड ऑन
1: हिम,
2: जुलाई 20th. राहुल
1: तुषार
2: गांधी
1: जी,
2: हैड द अपॉर्चुनिटी टू कॉर्नर द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट.
1: तुषार
2: ही
1: जी,
2: वेस्टेड एन एंटायर सेशन. नाउ
1: पद्मजा
2: द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट.
1: जी,
2: दे माइट
1: आई
2: हैव अ
1: जस्ट
2: स्पेशल
1: वांट टू
2: सेशन,
1: मेक
2: दे माइट
1: वन
2: एक्सटेंड द
1: सिंपल
2: सेशन, दे
1: आर्ग्यूमेंट।
2: माइट गो थ्रू द
1: ओके
2: मीडिया,
1: तुषार
2: दे माइट गो
1: गुप्ता,
2: थ्रू द ब्रीफिंग.
1: तुषार
2: वट
1: गुप्ता,
2: एवर इट इज, इट विल वर्क इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट
1: तुषार
2: नाउ.
1: गुप्ता, आफ्टर द शो एंड्स प्लीज लिसन टू योर सेल्फ, राहुल गांधी फोबिया कितना ज्यादा है, कितनी बार राहुल शब्द का इस्तेमाल किया, गिनती जरूर कर लीजिएगा।
2: अरे
1: अगले
2: भारती
1: बार
2: जी,
1: शो
2: एक
1: में
2: और
1: आने
2: राज
1: से पहले
2: सुनेंगी
1: कहीं
2: आप.
1: पद्मजा जी का समय
2: दो
1: बर्बाद
2: तिहाई
1: ना करिए,
2: मेजोरिटी में
1: अब
2: आपकी
1: मैं
2: भी एक
1: आऊंगी
2: दो एमपी
1: छात्रों के
2: शामिल
1: मुद्दे
2: है.
1: पर,
2: आपको
1: अब
2: पता
1: मैं
2: है
1: आऊंगी, जी,
2: ये दो तिहाई मेजोरिटी में आपकी भी दो तीन एमपी शामिल है. आपको पता है जो
1: अरे ये
2: वोटिंग
1: सारी
2: होगी
1: खबरें
2: आरजेडी
1: कैसे
2: में दो
1: लाते हैं,
2: तीन
1: जरा
2: एमपी
1: बाहर लाइएगा,
2: डिलिमिटेशन का
1: जरा
2: समर्थन करने
1: बाहर
2: वाले
1: लाइए,
2: हैं.
1: हमारे
2: थोड़ा अपनी
1: लिए भी,
2: पार्टी में खबर लीजिए.
1: हमारे
2: आपको
1: लिए
2: कुछ
1: भी,
2: बताते नहीं आपके पार्टी
1: जब
2: वाले,
1: आपकी जैसे
2: आपके
1: बिस्किट
2: पार्टी वाले
1: खाते
2: आपको कुछ बताते नहीं है क्या?
1: सब
2: ऐसे
1: बिस्किट,
2: बिना पढ़े आ
1: यू नो
2: जाते हैं
1: हियर्स द
2: टीवी पे
1: थिंग,
2: डिबेट करने
1: हियर्स
2: आपके
1: द थिंग,
2: पार्टी वाले
1: हियर्स
2: आते
1: द
2: हैं,
1: थिंग, हियर्स द
2: आपको
1: थिंग, प्रियंका
2: बिल्कुल
1: भारती,
2: गलत
1: प्रियंका
2: चीज बताते हैं.
1: भारती, एंड सिंस मेनी
2: एग्जैक्टली
1: पीपल मे नॉट नो दिस, द फैक्ट इज दैट, यू नो, फाइन, यू गो इनसाइड और आउटसाइड पार्लियामेंट, यू सीक द रेजिग्नेशन ऑफ द होम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द एंटायर कैबिनेट, द मोदी गवर्नमेंट, बट अगेन, when the parallels will be drawn, they will be drawn between Jantar Mantar and Jharkhand, and at that point somebody will turn around and ask the RJD, अरे झारखंड के सरकार का हिस्सा तो आप भी है ना, why don't you, if you actually stand for the rights of the students in Jharkhand as well, withdraw support, the Congress and RJD and the CPI ML should withdraw support.

0: क्या पता अगर सरकार ने खाली करा दिया।
1: मैम हम लोग डर किस बात का, हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? हमारा संविधान में भी तो लिखा हुआ है कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना कहीं भी बैठ के दे सकते हैं, चाहे प्रशासन डराए चाहे कोई भी डराए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, हमारी मांगे जायज़ है। आप ही के CID टीम ने इतना सारा खुलासा करके दिखा रहा है कि यहाँ चीटिंग हुआ, यहाँ इतना पैसों का लेन देन हुआ, तो हम लोग क्यों डरे? डरना तो आपको चाहिए, प्रशासन को डरना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग जो है जायज़ है, हम क्यों डरेंगे? हमारी तो शांतिपूर्ण धरना दे रहा
0: है। हम लोग की एक बार लाठीचार्ज हो चुका है 10 तारीख को,
1: तो ये मैम सरकार का डर दिखा रहा है स्टूडेंटों के प्रति, हमारा डर नहीं है। हम लोग को तो लाठी वही समय मार दिया जाता था जब पेपर लीक कर दिया जाता, पेपर को खुलेआम भेज दिया जाता, पेपर रटवाया जाता, उस समय हम लोग को लाठी मारता था। ये लाठी से हम लोग को डर नहीं लगता, ये अभी 2 लाठी मार दीजिएगा तो हम लोग का हिम्मत टूट जाएगा, हिम्मत कभी नहीं टूटेगा। हमारी मांग है जायज, आप हमारी मांग पूरा कीजिए, हम लोग अभी अनशन तोड़ने के लिए तैयार है।
0: क्योंकि बार बार प्रशासन आ रहा है, रात को भी आए थे जब यहाँ लाइट ऑफ की गई थी, उन्होंने कहा था आपका मांग ही लिया, मान लिया है सब कुछ, हट जाओ यहाँ से, अस्पताल चले जाओ।
1: हमारा मांग तो मुख्य मांग CBI जाँच के लिए, तो आप क्यों नहीं मांग रहे? आप इतना ही ऑनेस्ट है तो आप हमारे मांगों को पूरा कर दीजिए। डर तो आपको चाहिए, डरना तो आपको चाहिए, हमको डरना नहीं है, हम क्यों डरेंगे?
2: मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? वो जिस आवास में रहते हैं वो अपने आसपास सिक्योरिटी रखते हैं, CCTV कैमरा, बहुत सारे गार्ड्स। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा झारखंड है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आप TDPL जैसे कंपनी को पर छोड़ दिए कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। जो जो अदर स्टेट में जिसको अमान्य माना गया है उसको उसके ऊपर आप अपने झारखंड के स्टूडेंट्स का भविष्य सौंप दिए, तो ये सोचने वाली बात है। ये जो बोलते हैं कि हम लोग को नहीं पता है, उल्लू मत बनाइए स्टूडेंट्स को। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जिस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं, उसी तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स मैम जो होते हैं वो 3 पीढ़ी को एक साथ लेकर के चलते हैं, एक तो माता पिता वाली पीढ़ी, एक खुद की पीढ़ी, और जो आने वाला जनरेशन होता है वो पीढ़ी। आप सोचिए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स लेकर के चलते हैं और उनके साथ आप इतना अन्याय कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, समझ नहीं आती?
0: दीज आर नेम्स एट द एंड ऑफ द डे दैट पीपल अक्रॉस इंडिया मस्ट रिमेंबर। उम्मे हामी, सबिता कुमारी, रूपेश एंड राहुल क्रांति, रिमेंबर आउटसाइड ऑफ एनी पॉलिटिक्स, दीज आर एक्चुअल स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हु हैव सैट हियर फॉर ओवर अ वीक विदाउट एनी फूड और वाटर, सो दैट द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस झारखंड शुड बी हर्ड। विद वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी एंड प्रवीण यादव इन रांची, पद्मजा जोशी फॉर NDTV।
3: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
4: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
3: The show that sets the prime time agenda.
4: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
3: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: there is no mercy, there should be absolutely no leniency to be shown, a strictest possible action has to be taken. However, before you put the noose around his neck, let it be established, because there have been cases where drugs normally taken as or polluted foods also, which have shown positive. So let the specialist decide whether what sort of drug is it, how is it actually a banned drug, and has he voluntarily and willfully taken it. So first that has to be established.
1: And shifting our focus to what has happened in the national capital today, the parliament deadlock continues with opposition creating ruckus and raising slogans while the centre is ready for the debate. The Union Home Minister has now written to the Speaker saying that he is ready for a debate on NEET. But the opposition has been unrelenting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has now launched a sharp attack on the opposition, accusing it of running away from a discussion in Parliament. Rijiju says that the government is ready for an open, extensive and detailed discussion, but alleges that the opposition lacks the courage to participate. He says that the Home Minister has also written to the Lok Sabha Speaker, urging him to persuade the opposition leaders to agree to the discussion, and especially when tomorrow is the last day of the monsoon session 2026. Rijiju calls the situation not good for democracy and not good for the country.
2: We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not?
3: जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है. ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए. ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जोड़ करके स्पीकर को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाइए.
4: बताइए आप क्या सोचते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे हैं बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं, हम भी चुप बैठे हैं, ये चाहते हैं आप?
5: डिमांडिंग फ्रॉम जुलाई 20th ओनली वन डिमांड इज दैट द अटैक ऑन स्टूडेंट्स इन जंतर मंतर दैट शुड बी आंसरेबल. We wanted Amit Shah to come and apologize, and Mr. Modi to apologize about the children, to the children whom the Delhi police has beaten up, using gundas as police uniforms. They beaten up the girl children. And third very important demand we are making is Chadda Chori. Ram, in the name of Ram, they had from two seats, they had come to this level. And Prime Minister Mr. Modi has gone to the inauguration of Ram Mandir. There Chori has taken place. Theft has taken place in the temple where Mr. Modi is having the control of the Ram Mandir, Ram temple. He should be first answerable that discussion needed in parliament. Why they are running away from parliament? I am unable to understand.
6: Amit Shah ki statement ke Amit Shah ko to istifa dena padega. Statement ki baat chhod dijiye. Bhavishya mein ye naubat aane wali hai ki Amit Shah ko istifa dena padne wala. Aap dekhiye. क्या होता है, इतना आसान नहीं है.
7: नहीं तो यही चीज जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो उनको बोलिए हाउस में आके बोल दे, वो हाउस आ ही नहीं रहे.
8: तो आप भाई क्या लग रहा है
7: भाई, पार्लियामेंट वो तो वही बता सकता है, जो नहीं आ रहा है वही बता पाएगा. मैं तो आ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ पा रहे उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा. लेकिन ये जो इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजोरिटी रहने के बाद जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो. और आप अंदर से घबराए हुए हो, और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है, और उसका जवाब आपके पास नहीं है।
9: गृह मंत्री जी शुरू से यहाँ पे जवाब देने को तैयार है, पर उनकी एक ही शर्त है कि आप धैर्य से पूरी चर्चा सुनोगे और धैर्य से संसद चलने चलोगे। ये चलाना नहीं चाहते क्योंकि इनका असली मुद्दा है FCRA बिल। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए, जॉर्ज सोरोस से पैसे लिए, यहाँ तक कि जो देशद्रोही है जाकिर नायक उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया। तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं।
1: Well, we're counting down to the last day of the monsoon session. Pardon me, 2026, but amid massive ruckus, the Lok Sabha passed a motion this afternoon to send the FCRA bill to a joint parliamentary committee for consideration. The JPC is now expected to present a report on the bill by first week of the winter session. MOS Home Affairs Nityanand Rai introduced the motion in the House, with the Congress, SP and DMK opposing the bill, while Congress's KC Venugopal accused the government of aiming the bill at minority institutions doing good work. Akhilesh Yadav asked the government whether they have brought in any legislation that does not target minorities. DMK's T.R. Balu urged the government to withdraw the bill entirely, then pursue the JPC route. Challenging the opposition, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju intervened and said, "Show me one provision that is anti-minority in the FCRA bill." And this, of course, comes at a time when Union Home Minister Amit Shah also met various Christian minorities to bust all kind of myths regarding the FCRA bill. Further, Rijiju accused the opposition of spreading falsehoods.
10: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए, और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी, कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
11: The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah Ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, ours is getting complete donation from the foreign countries. On one side, ours is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw the bill.
12: कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा, कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं। जेपीसी को पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुलाकर के आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है।
13: सभापति महोदय, जो सरकार

0: But the move has triggered a political fight. Congress MP Sukhdeo Bhagat says that Himachal has limited revenue sources after the disaster and that these taxes are meant for welfare, not luxury. The BJP, however, is hitting back. MP Yogendra Chandolia says that people are now being troubled after the election, while Manoj Tiwari has rather accused the government of failing to stand up for students and disrupting the parliament as well.
1: हिमाचल प्रदेश की सरकार तो इस प्रकार की सरकार है जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए. वह हाहाकार है, लोग परेशान है हिमाचल की सरकार को चुनकर कि राहुल गांधी ने उनको जो वायदे किए थे उसमें धोखा दिया है.
2: वही लोग हैं जो लोग न संसद चलने देते हैं, न ये छात्रों के हितों में खड़े होते हैं. ये वही लोग हैं जो लोग न संसद चलने देते हैं, न ये छात्रों के हितों में खड़े होते हैं.
3: वो जब डिसास्टर के दौर से जब हिमाचल प्रदेश गुजर रहा था और गुजरा है और प्रधानमंत्री जी वहां वायदे करके आए, लेकिन जिस प्रकार जो सेंट्रल असिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं मिला. सरकार के पास ऐसी कोई राजस्व के साधन नहीं हो पाते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो पाता है. लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो शेष लगाए जा रहे हैं वो कल्याणकारी कल्याण के लिए ही लगाए जा रहे हैं, कोई वेलफेयर मेजर्स के लगाए जा रहे हैं, किसी अन्य चीजों की विलासिता के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं.
0: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back. Lots more lined up.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
5: Your friend said, "Yeh le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: In the national capital today, the parliament deadlock continues with opposition creating ruckus and raising slogans while the centre is ready for the debate. The Union Home Minister has now written to the speaker saying that he is ready for a debate on NEET. But the opposition has been unrelenting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has now launched a sharp attack on the opposition, accusing it of running away from a discussion in Parliament. Rijiju says that the government is ready for an open, extensive and detailed discussion, but alleges that the opposition lacks the courage to participate. He says that the Home Minister has also written to the Lok Sabha Speaker, urging him to persuade the opposition leaders to agree to the discussion, and especially when tomorrow is the last day of the monsoon session 2026. Rijiju calls the situation not good for democracy and not good for the country.
1: We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not?
2: जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है. ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए. ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जो करके स्पीकर को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाइए.
3: बताइए आप क्या सोचते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं, हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप?
4: डिमांडिंग फ्रॉम July 20th ओनली वन डिमांड इज दैट द अटैक ऑन स्टूडेंट्स इन जंतर मंतर दैट शुड बी आंसरेबल. We wanted Amit Shah to come and apologize, and Mr. Modi to apologize about the children, to the children whom the Delhi police has beaten up using gundas into as police uniforms. They beaten up the kids, girl children. And second very important, third very important demand we are making is Chadda Chori. Ram, and, in the name of Ram, they had from two seats they had come to this level, and Prime Minister Mr. Modi has gone to the inauguration of Ram Mandir. There Chori has taken place. Theft has taken place in the temple where Mr. Modi is having the control of the Ram Mandir, Ram temple. He should be first answerable that discussion needed in parliament. Why they are running away from parliament? I am unable to understand.
5: Amit Shah ki statement ke Amit Shah ko to istifa dena padega. Statement ki baat chhod dijiye. Bhavishya mein ye naubat aane wali hai ki Amit Shah ko istifa dena padne wala. Aap dekhiye. क्या होता है, इतना आसान नहीं है.
6: नहीं तो यही चीज जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो उनको बोलिए हाउस में आके बोल दे, वो हाउस आ ही नहीं रहे.
7: तो आप भाई क्या लग रहा है
6: भाई पार्लियामेंट, वो तो वही बता सकता है, जो नहीं आ रहा है वही बता पाएगा. मैं तो आ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ पा रहे उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा. लेकिन ये जो इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजोरिटी रहने के बाद जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो, और आप अंदर से घबराए हुए हो, और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है, और उसका जवाब आपके पास नहीं है.
8: गृह मंत्री जी शुरू से यहाँ पे जवाब देने को तैयार है, पर उनकी एक ही शर्त है कि आप धैर्य से पूरी चर्चा सुनोगे और धैर्य से संसद चलने चल रहा हो. ये चलाना नहीं चाहते क्योंकि इनका असली मुद्दा है FCRA बिल. राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए, जॉर्ज सोरोस से पैसे लिए, यहाँ तक कि जो देशद्रोही है जाकिर नायक उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया. तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं.

0: we're counting down to the last day of the monsoon session. Pardon me, 2026, but amid massive ruckus, the Lok Sabha passed a motion this afternoon to send the FCRA bill to a joint parliamentary committee for consideration. The JPC is now expected to present a report on the bill by first week of the winter session. MOS Home Affairs Nityanand Rai introduced the motion in the House, with the Congress, SP and DMK opposing the bill, while Congress's KC Venugopal accused the government of aiming the bill at minority institutions doing good work. Akhilesh Yadav asked the government whether they have brought in any legislation that does not target minorities. DMK's T.R. Balu urged the government to withdraw the bill entirely, then pursue the JPC route. Challenging the opposition, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju intervened and said, "Show me one provision that is anti-minority in the FCRA bill." And this, of course, comes at a time when Union Home Minister Amit Shah also met various Christian minorities to bust all kind of myths regarding the FCRA bill. Further, Rijiju accused the opposition of spreading falsehoods.
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
2: The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah Ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, ours is getting complete donation from the foreign countries. On one side, ours is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill.
1: वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पर इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपने पर रख सकते हैं। जेपीसी को पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुलाकर आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे जब जेपीसी भेजते हैं। जेपीसी में
3: जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। और सभापति महोदय, सभापति महोदय, अगर आप माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप?
1: अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं, इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal. What's happening? How?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
4: Join me, Harisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
0: आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, of Saturday.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.